नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूबाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को

0: सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है वंदन वार।

आज का चिंतन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन की चंचल वृत्तियों को पूरी तरह शांत और नियंत्रित करना ही योग है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

हम अपने खून का हर एक कतरा।

हम अपने खून का एक कतरा।

0: बचाए,
1: हम अपने खून का हर एक खतरा बहा।

0: कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister, and there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people, and the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल

0: के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
0: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर्यन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं।

0: राम भारत माता की।
1: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kakdweep. And now we can see that the Honourable Prime Minister, Sri Narendra Modi, is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Purjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासी

देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया,

रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सीबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away.

with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है, लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में

0: इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: जी, और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती के हम विश्व शांति की कामना करते हैं। हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं, सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथ

0: হাতো কো সামান্য স্থিতি মে লেকে আইয়ে দুটো হাতকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন যে স্থান পর আপ বেটে উস স্থান পে খড়ে হো জাইয়ে নিজের জায়গায়
1: দাঁড়িয়ে পড়ুন মঞ্চ সে নির্দেশ দিয়ে যা রহে হ্যায়
0: হাম সব
1: অর যোগ সাধক উন নির্দেশো কা পালন করতে হুয়ে আপনে আপনে স্থান পর যোগাভ্যাস শুরু কর রহে হ্যায় पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: Maa Kali ka aashirwad liye Swami Vivekanand aur Maharshi Arvind jaisi vibhootiyon ka darshan is bhoomi mein hai. Sanskritik, aadhyatmik aur baudhik virasat hai ye hamare yogiyon ki, hamare muniyon ki vishesh tayariyon ke saath aaj yahan yogabhyas kiya ja raha hai aur is samay griva chalan ka abhyas yahan par kiya ja raha hai. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
1: जी
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
1: जी
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना ऊपर नीचे करना ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
1: जी और यहां पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है मतलब उसकी इंटेंशन उसकी पहुंच उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
4: योग पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्म पूरा विश्व पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है बस जानता नहीं है ना।

0: अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहां पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहां पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहां समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटैलिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।

0: जी,
1: यस
0: और
1: एंड
0: इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी, सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी,
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
1: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूं, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: एंड वी कैन ऑल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers.

0: volunteers who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed, a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन है. और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं. एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है. यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं. और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
1: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं. और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है. और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
0: यस एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहां अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं. और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन. ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने

0: वाला आसन है ये।
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा। तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू दी
1: आसन गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसन, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहां पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक

0: कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ

0: पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है, और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
1: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है,
0: जी,
1: तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी,
2: नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित है, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था, और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आप

0: आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
2: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं, और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड, एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे, और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव न बनाए बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़े।
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशन्ड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
0: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकली

वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं।

0: सीक्रेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड, एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी, दैट टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड कोलकाता, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो योगा वॉज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन टू द लैंड। The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts, and in the mighty Himalayas the men who guard us are vanguards of the borders, the Indian Army personnel.

0: the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging.
1: योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं. इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया. योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से भागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है. और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा. और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया. 8 बजने को हैं. अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे.

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रही तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: स्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यह कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक

0: युवक होरमोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होरमोज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का। आज योग दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। योग जीवन जीने की कला सिखाता है। ताल से ताल मिलाकर योग करना हमारे जीवन के लिए, हमारे सांसों के लिए, हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत आवश्यक है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे। ए आर रहमान का संगीत निर्देशन था, ताल फिल्म का नाम था, आपने सुना ये गाना।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
3: कौन लाया कौन लाया।
4: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
4: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
4: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लहमर हुसैन पुरी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप राजशेखर का लिखा हुआ सुन रहे थे। संगीतकार थे कृष्णा और फिल्म का नाम था तनु वेट्स मनु। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा।

0: शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट UG पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।

0: योगाभ्यास के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए

0: हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग

0: पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और xhandle AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केन्द्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में

0: बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम कल 100% पूरा कर लिया गया। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य संपन्न हुआ। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: सुन रहे थे गीतकार और संगीतकार थे नितिन रायकवार।
5: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
6: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
5: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
6: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
5: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
6: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
5: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: एक कौन चित्रकार है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।

माधुरी दीक्षित नेने और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।

0: उदित नारायण और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज फादर्स डे है, पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना गया है। पिता का स्नेह, पिता का अनुशासन और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए। और यदि कोई
1: रहित बन सकता है, 14 जून को साहित्यिक पत्रिका ट्रू मीडिया के तत्वधान में वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवित्री डॉक्टर भूपेंद्र कौर सचदेवा के सम्मान में एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य, संस्कृति और सम्मान की इस गरिमामयी संध्या में दिल्ली एनसीआर के अनेक प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और समाज सेवी एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम के

0: तत् उभरते कवियों कवित्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वश्री लक्ष्मी राज सिंह, गजलकार राज कौशिक, कवि मनोज कुमार मनोज, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय, रनिता सिंह, तिब्बा त्रिपाठी, कर्नल प्रदीप खरे, मंच का कुशल संचालन डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने किया। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान एवं सह संस्थापिका डॉक्टर गार्गी सिंह उपस्थित रही। कार्यक्रम भागीरथी पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के निदेशक श्री अमिताभ सुकुल एवं प्रबंधक श्री अनदी शुक्ल का इस आयोजन को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान ने बताया कि प्रथम वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य काव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। सर्व श्री उषा श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, सरिता गर्ग सरी, रक्षा सिन्हा, हिमांशु शुक्ला, संगीता वर्मा, यश शर्मा, आशु सिंह, स्वाति पूजा, प्रेरणा मल्होत्रा, जगदीश चंद्र वर्मा, सरोज दुबे, अपर्णा गर्ग शिव, शालिनी शर्मा, नीति मिश्रा, पूनम सिंह, नीरज त्यागी, रोहित कुमार, दीपक दीप, पूजा चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलग ट्रस्ट द्वारा दो बच्चों को शिवानी चौधरी और पूजा को शिक्षा के लिए अंगीकृत करते हुए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गान के उपरांत कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 15 जून 2026 को सादरा स्थित शशि पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामचरण सिंह साथी गीतों और गजलों की एक भव्य संगीत में प्रस्तुति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसमें उपस्थित श्रोताओं ने रचनाओं का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि श्री प्रीतम सिंह प्रीतम ने की, जबकि कार्यक्रम का सानिध्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने प्रदान किया। मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रामचरण सिंह साथी की रचनाएं जीवन के विविध रंगों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को अत्यंत सहजता और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा श्री रामचरण सिंह के गीतों और गजलों की संगीत में प्रस्तुति। सुप्रसिद्ध गायक श्री दीपेंद्र दीपक ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में साथी जी की रचनाओं को स्वर देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री वीर सेन जैन सरल, श्री प्रदीप शर्मा, श्री चंद्रपाल भारद्वाज, कुसुम वियोग, राजेंद्र प्रसाद रंजन तथा श्री प्रकाश प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने रामचरण सिंह साथी के साहित्यिक अवदान की सराहना करते हुए उनकी रचनात्मक यात्रा को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावशाली संचालन कवि श्री पी के आजाद ने किया। उन्होंने अपने सदे हुए संचालन से पूरे आयोजन को रोचक और गरिमामयी बना दिया। अंत में उपस्थित साहित्यकारों, कवियों, संगीत प्रेमियों और श्रोताओं ने इस आयोजन को साहित्य और संगीत का एक यादगार उत्सव बताते हुए आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम रचनात्मक सांस्कृतिक चेतना के वातावरण में सम्पन्न हुआ।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर पूजा भारद्वाज। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: साहित्यिकी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, हमारे अतिथि।
3: नमस्कार। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को डालकर, वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर चलते रहे वक्त के साथ, आंखों में आंखें डालकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे अतिथि कार्यक्रम में काजल का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है हमारे इस कार्यक्रम में, उनके लिए ये जरूर कहूंगी कि कला केवल रंगों और कपड़ों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वो संवेदनाओं, कल्पनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। आज हम ऐसे ही एक सृजनशील

0: अभी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गांव के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
2: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: संविधान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे ये लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियां संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार की तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गांव में।
1: संगठन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पर जोर देते हैं।
1: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गाँव गाँव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गांव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं। और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कम्प्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उस

0: इसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
1: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं और हमें यह समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है। इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं। वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
0: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
1: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल की तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
0: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
1: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है। हमने पेपर वर्क, फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गांव है। विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
0: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
0: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
0: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
1: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहां पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहां पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहां पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गांव के आसपास जितने भी घर है उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गांववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गांव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाएं तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
0: सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।

0: साहब?
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
0: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
0: चलो
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने।
2: खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी समृद्ध ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाजत, नमस्कार।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे का शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहाँ से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको

0: लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
1: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका

0: कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
1: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
0: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
3: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
0: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं।

0: शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकालकर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकालकर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहां तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने

ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ एक दो साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप जो जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन ऐसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज ए टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूँ कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूँ। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता क्योंकि हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था अपनी, लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है। तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी ताकि

0: लोग उसको एक अलग नजर से देखें,
1: उस बच्चे को,
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं। मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है। अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूं कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो यू नो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होते हैं, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा। तो वो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना था, टेक्निकल चीजें से नहीं होती है, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती है, करतब दिखती है, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक यू नो अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस, यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना बहुत कठिन होते हैं, बिकॉज एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी, एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो, आप हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

0: गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है, तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए, मेरा उसमें मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कांट प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर, काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं, आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट, वो 5 दिन की होती है। सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिये मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। अच्छा, तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें। सर नहीं नहीं, तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम हरा तो रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने व्हाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक इट वाज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
0: क्रेज
1: है। एंड प्लस सी वो ही थिंक्स मेटाफोरिकली। अच्छा, ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को रणवीर को रिझाना है और इसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट। उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स, उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
0: जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है, हाँ। और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
1: चुका है, तो मजा आता है काम करने का।

सेकंड में मैं एक और मजे की बात करूंगा. यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके रणवीर के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है. तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया. लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था. अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा. उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे. ही इज दैट डिटेल. फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है. तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धनुची कि

0: में दोनों ची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि दोनों ची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला दोनों ची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को दोनों ची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और फेस से फिर वो अपना बालों को सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप भी नहीं,
1: से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत ही वाज लाइक दैट डिटेल कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा।

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं। और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं, हाँ। आपने भी कहा कई मकाम हैं,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताओ मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूं, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी अरमा है। मैं चाहता हूं कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फोन पे। इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैं ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूं। बहुत सारे चीजें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ,
0: एक तो बहुत ही इजी है,
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है
0: मेरा। अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करना
1: पड़ेगा। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं मेन वन। मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस। आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूं, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूं, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपना अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो, और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहां पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट। इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चरें जब मैं देखता हूं तो मैं मतलब बोलता हूं कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है। तो वो एक अलग लेवल का।
0: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
1: हाँ।
0: सवाल यह ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस

0: मोमेंट के बाद अच्छा। और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरी लाइफ में हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, इनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ बोल रही अगर एक एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और सोल्स कॉल माई सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूं और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से।

0: अब एक और बात है
1: हाँ।
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ। ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है
1: हाँ।
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है हाँ। उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है
1: हाँ।
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको

मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीजें जो मैंने सीखा है, समझा है, दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हमें खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूँ कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स

0: लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मजा आया। और ऑल्सो यू नो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूं बिकॉज विविध भारती ये शब्द मुझे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो जो यू नो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
0: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: पे आया,
0: पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया। हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात
0: है। और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे। हाँ। लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पे जब आप पहुंच जाएंगे।
1: हाँ।
0: तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है, जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जबी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप जरूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा तो बहुत सारे जो मकाम है जिंदगी में मैं जरूर हासिल करना चाहूंगा आपके आशीर्वाद से।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं
1: जी।
0: कल्याण जी वीर जी शाह,
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
1: जी जी,
0: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
1: जी।
0: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी

0: उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
0: जी।
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे। और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
1: क्या बात है, देखिए कहाँ कहाँ कैसी कैसी संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहाँ पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहाँ संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहाँ बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ।
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे। और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा, संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए। और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था।
1: कौन सा?
0: उसका नाम था क्लेवियोलाइन। और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
1: जी जी।
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है। और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये।
0: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को
1: जी जी।
0: और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया। और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह जी को हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूंगा कि वो क्लेवलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था। उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझती नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को न दसी हुई। उसके बाद ये सुन के और मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन भी बचाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाई, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कल्याण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहां भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वो गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था, ऐसा लगता है कि जरा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी ऐसी, आगे कुछ नहीं।

0: सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं, तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे जरा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करें, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फाइनेंशियल, तो उनके जो एडवाइजर था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोरदा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बार पॉइंट अच्छा अच्छा फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया, आपके इतने फैन है यार, एक दो दफे बोलते रहो बस यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो वो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, योडलिंग तो हम लोग बैठ के कोई प्लान बनाए थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बैठे तो मेरा किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो वो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोरदा अभी वो आवाज निकाली आप इतने अच्छे आप बात कह रहे थे। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैंने कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूं ऐसे। तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूंगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक दौर से ऐसे लाफा मारा सबने धड़ करके, और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज निकल के उन्होंने गाना शुरू किया। बस ये स्टाइल।

0: मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के जरिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो आप पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
2: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जाम जाए कोई लोग हंसते नहीं हो सब है, तो और इसमें सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि किरण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है बिल्कुल, अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफी चीजें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेस भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है बस, दिस इज बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी कला जी बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही तो इतना बड़ा लाफ्टर है, बोले वो क्या समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही नहीं बोल सकते।

आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल

0: गणेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी। तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी दे रहा।

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफी जी वॉज ए ऑलराउंड आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ। बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको जरूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूजिक का सब्जेक्ट रहा तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, मदन मोहन उन्होंने अच्छा किया, शंकर जयकिशन उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था, संजीव चौधरी, अनिल विश्वास सब ने। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज्यादा में ज्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एसडी बर्मन को बहुत मानता हूं। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है, तो उसमें ऐसा एक एटमोसफियर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया है, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया वो सुनाइए, बहुत मजा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आंजी नाइट होती थी तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हो, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तब भी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है, मैं देखा उनको बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियां एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहां से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: अलन जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिसपे आप काम कर रहे हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की जरूरत कोई ज्यादा नहीं है, और वो जरूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज है वो बांटना, ऐसा ना पैसा है काम का रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है, तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं, तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।

0: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुन करके कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
0: ये तो
1: संगीत का सौंदर्य है। जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
0: वाह, क्या बात है।
1: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल,
0: वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
1: जी हाँ, और आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
0: जी,
1: आज
0: जी।
1: तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो भी आरडी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
0: और विविधता, ये जो शब्द है, इसको सार्थक किया है आरडी बर्मन के संगीत ने।

0: जी हाँ, चाहे
1: आप
0: वो
1: उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए
0: जी हाँ? एक लंबा दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे, छोटे नवाब का
1: बिल्कुल,
0: गीत, जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिर आए बदरा सांवरिया,
1: रोंगटे खड़े हो गए
0: जी हाँ। शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए,
0: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा जाता है, बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ,
1: वाह वाह,
0: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी, एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
1: जी जी
0: श्रोताओ, आरडी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार, और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती,
1: यही विशेषता इस श्रृंखला की है कि आरडी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है,
0: जी हाँ,
1: आशा जी और गुलजार साहब,
0: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे, तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है,
0: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी,
2: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
3: अच्छा,
2: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
3: अच्छा,
2: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
3: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई,
2: कट्टी हो गई, और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ, तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली, और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ, तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था, मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट ही है, आशा बोलो कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल
3: रिहर्सल
2: नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी, उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए,
3: रूठे हुए थे,
2: रूठे हुए। तो पिताजी आए, आके बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे, वो ऐसे बात करते थे, और आपको जितना डेट चाहिए, एक महीना का चाहिए ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आ जा घिर आ, और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया।
3: अच्छा।
2: और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
4: एक बात मैं आपसे पूछूं?
2: बिल्कुल
4: सच बताने का।
2: हाँ बताइए।
4: जब आपने लता मंगेशकर को
2: जी
4: पहले रिहर्सल के लिए
2: ये कुछ
4: गाना शुरू किया,
2: घेराव करके मेरे तरफ आ रहे,
4: तब आप अंदर से कांप रहे थे?
2: बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला।

0: मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसके रिकॉर्ड में मिला।
1: अच्छा।
0: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा बहुत मेरा भाग ही चला।
1: बोल कैसे उस गाने के,
0: घर आ जा घिर आए

0: ये तो शुरुआत हुई आर्य साहब की और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं और उसमें आरडी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी और उसके साथ जी हाँ फिल्म किताब का वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आरडी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आरडी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ। अच्छा छोड़ दे, तू भी मत गा, आज कल करते हैं, परसों करते हैं,
4: बिल्कुल
2: गाना टालते हैं बहुत।
4: आशा जी वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
2: जी।
4: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के जिस तरह से आपने गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसकी बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था और मैंने वो घंटी इसी के

0: गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है, धनों की आंखों में।
1: इसका कमाल
0: वो है? वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता, यूं के लिए
2: ज्यादा बेटर है।
0: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
2: उसमें एक गिटार का जो पीस है,
0: एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
1: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
0: अच्छा।
1: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही करता हूं, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से
0: भी, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट,
2: वही
0: मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट होगा, और तो कुछ भी नहीं।
2: उसी के ऊपर
1: कैसा गा रहे थे हम,
2: ऐसा था।
1: चलिए गाना सुन के देखते हैं।

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिलकर के ये एल्बम बनाया था दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं इसको, तो जितनी बार सुना जाए उतनी
0: बार। इस एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है, उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए अलग है
1: जी। तो आज कौन से

0: पहले एक गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं।
1: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
0: अच्छा।
1: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: पड़ोसी में आप गाना।
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी।
2: इसके बारे में तो गुलजार बताया।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले
4: ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल पर्सोनिफाई करके देखिए आप।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं। जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ ये है कि उसे पर्सोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है।

0: सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं, जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ ये है कि उसे परसोनीफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती है, वो चुप है, जो नहीं बोलती, वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ परसोनीफाई करके देखिए आप।
1: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किया
2: सर,
1: बड़ा अच्छा था मतलब।
2: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है।
0: हाँ।
2: तो समझ नहीं आता कि बांसुरी बोल रही है कि राधा बोल रही है।
0: जी हाँ, बस वही तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी, जैसे फूंक फूंक के बोलती है।
2: जी।
0: अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओं, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया।

0: इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम।

0: साहिल लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्र गुप्त ने, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम

0: नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: آپ سن رہے ہیں یادوں کی محفل،
1: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گا

0: उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को, तो इसका मतलब

0: मजदूरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी,
0: तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं
1: देगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है
1: जी,
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा

0: देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी

0: सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
0: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
0: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख ले तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कम्पिटिशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है, वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है,
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था, उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म, अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा। आपने एक साल पढ़ा, एक साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कर

0: वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने एक साल पढ़ा हो दो साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहो तो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं जिस वक्त उनको बुआई

0: करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं
1: जी,
0: वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं, वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है, अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है तमाम तालाबों का, सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं, उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्होंने मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने

0: आगे बढ़ा और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे?
1: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
1: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला जी, टिक्की वाला।
2: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है?
3: निश्चित रूप से, मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ। जहां मैं भी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
2: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
2: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची है।
3: एकलव्य स्कूल का हमने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशन है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होंगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग से पड़ी है वहां पे, यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड

0: टेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में, रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किसकी रचना थी। वैसे तर्ज थी एसएन त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहां पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की भारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है, तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहां की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गत्ते की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती।

प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सब परिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था। जी हाँ, आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना श्रोता लिखती है कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहां का रहन सहन, खान पान, वहां की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहां के पकवान, घेवर मावा, कचौड़ी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था।

इस गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीली सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहां के लोकल ड्रेस में फोटो खिंचवाए। जहां लोकल ड्रेस जहां की भी हम घूमने जाते हैं वहां की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें जरूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है। महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीजों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियां कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम है वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती है लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफे आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैंने पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से जो सिमी गरीवाल और सखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियां जो है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोताओ आप इसके बारे में भी जरूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था। तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहां तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आपको बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात पंजाब और आगे भी फैला हुआ है। तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहां की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमती और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेम्पल। क्या आपने ये टेम्पल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है।

योग का इतिहास सहस्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखें।

0: करने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में

0: समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी

0: हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

Hey, man.

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढलाओ पिनैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तरह से मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम सम्पन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओ, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविन्द्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल श्रीमती ज्योति पाटिल योगेश कुलकर्णी शर्मिला महात्री इसी गीत को सुनना चाहते थे अदालत दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव ऋचा गायत्री वैष्णव भीष्म दास मानिकपुरी ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन नायाब बेन प्रीति बेन मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

0: سات عجوبے اس دنیا میں آٹھ میں اپنی جوڑی
1: سات عجوبے

छे फुलका।

है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो, अरे रानी माँ से मुझको भी

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी की बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू,

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साय लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये। और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए सादुर शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई और इसी

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज दो, अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चल एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छल्ली बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुड़ो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम।

0: करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
1: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलायम, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन जी जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
3: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते हो। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेन, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीकचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेज मोलाइज क्या फरमा रही है?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेज मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए, और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: ओह यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।

0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
1: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
1: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
2: ये लीजिए, मैं आ गई। देखिए,
1: क्या नाम है तुम्हारा?
2: जिनी पैराम्बा।
1: क्या करती हो?
2: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
2: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
1: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
1: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो। अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी।
2: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
1: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
2: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
2: छी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
1: प्लीज मिसेस मुलायम, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये चाहता हूँ सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ, मेरे साथ आओ।
2: नहीं, वो क्यों जाएगी?
1: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहाँ जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
2: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा था।
1: ओ जिटू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
1: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
1: जिडू, समझती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं,
1: इट्स माय ऑर्डर।
2: नहीं, छोड़ दो मुझे।
1: चला, चला।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?

0: नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हा?
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? तो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं, आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाजी? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं। धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दू।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, चार नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: पेंच। ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
2: तुम कैसे हो पेंच?
1: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
2: पेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। पेंच।
1: इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
3: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
1: नहीं मालूम।
3: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
2: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
1: जी,
3: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग, वहाँ कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
2: बेंच, ओ बेंच,
1: जी
2: बचाओ,
1: जी
2: बेंच,
1: जी
2: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए, उसे क्यों लेकर आए, बताइए।
3: सिर्फ लेकर ही नहीं आए,
4: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला
3: है। बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं।
3: थॉमसन,
1: जितना भी सताना हो मुझे सताइए और उसे छोड़ दीजिए।
3: सॉरी मिस्टर मोनाइट, आपकी वजह से,
1: सिर्फ
3: आपकी की वजह से
1: मिस्टर थॉमसन,
3: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
1: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं। वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की माँ ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच? कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

1885 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे, आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और फिर वो थिएटर में मम्मी जो

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूं। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ अपने।

0: बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट,
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी

0: मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहाँ ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं। उतना सा खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है? राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट

0: जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
1: जी।
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनके एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है,
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग!
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए, जब भी चाहिए, वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची, ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।

0: परंतु उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ। जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंडसअप का जिक्र मिलता है, काई स्वप्ने भी काईची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका भी खूब जिक्र मिलता है। अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है। सो काही स्वप्ने विकाईची ये जो प्ले था, ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उसपे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था,
0: और वो पापा भी पापा के निर्देशन में।
1: एग्जैक्टली तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
0: अब उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी, और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
1: करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वॉज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था। इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्सअप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंडसअप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे, और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता।

0: रहा है तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की। ओके और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में। तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है कुछ अर्जेंट काम होगा तो सॉरी सॉरी सर करके। तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
1: क्या प्यारी बात है, वाह। यहाँ भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं।
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते ही गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बांद्रा बहुत महंगा था तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे करेंगे,
1: पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गए था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
0: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे, पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है।

0: रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात यह हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है। उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी।
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली, इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी।
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे।

0: प्रिय रहा है ये रोल उनके हाँ। लिए, और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहां पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था, और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो। ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
0: जो कसर रह गई
1: वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
0: yes.
1: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
0: ओके हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
1: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
0: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
1: हाँ?
0: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
1: वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
0: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1: right.
0: तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए?
1: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है, वो था राजी फिल्म का ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो।
0: क्या बात है, मुजा साहब के बोल।
1: ऑफ कोर्स
0: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व योग दिवस की, एक ऐसा दिन जो हमें स्वस्थ जीवन और सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित करता है। दोस्तों, हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, जब भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाना है और वर्ष 2026 की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस थीम का संदेश है कि योग केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। यह शरीर को सक्रिय, मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। साथियों, विश्व योग दिवस का महत्व है, योग से शरीर मजबूत, लचीला और रोगों से मुक्त रहता है और प्राणायाम और ध्यान तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायता मिलती है। योग हमें अनुशासन, संतुलन और सकारात्मक सोच सिखाता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो आज पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रही है। इस वर्ष की थीम के अनुसार योग उम्र बढ़ने के साथ भी हमें सक्रिय, स्वतंत्र और स्वस्थ बनाए रखता है। योग दिवस का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 से संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, जिसे 175 देशों का समर्थन मिला। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। दोस्तों, योग से ही जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और सुख संभव है। दोस्तों, इसी के साथ ही आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार हैं गुलनाज बानो, भेंटकर्ता हैं चंचल।
1: दोस्तों, कहा जाता है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो हर सपना संभव है और अगर मन शांत है तो हर चुनौती आसान हो जाती है। लेकिन आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर और मानसिक संतुलन बनाए रखना हम यूथ्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में एक ऐसी प्राचीन विधा है जो हमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाती है और वो है योगा। तो दोस्तों, योगा सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें सेहतमंद रहने के साथ साथ सकारात्मक और केंद्रित रहना भी सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंचल और आप सुन रहे हैं युवानी। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे योग के महत्व और युवाओं के जीवन में इसकी भूमिका के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योग स्पेशलिस्ट गुलनाज बानो। आपका युवानी में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: हम अपनी बातचीत शुरू करने से पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें और बताएं कि आपकी योगा की शुरुआत कैसे हुई।
2: जी, तो मेरा नाम गुलनाज बानो है और मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद बीपीए डिग्री जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से कंप्लीट की है। ये एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होती है। यहाँ पे पहली बार मैंने योग के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स और अलग अलग फॉर्म में मैंने जब गेम्स में योगा को जाना तब वहां से मेरी योग की जो है शुरुआत हुई। इसके बाद मैंने दिल्ली से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो योगा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वहां से अपना योग का डिप्लोमा किया। एंड देन उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ता रहा उसके बाद मैंने अपना एमए की डिग्री हरिद्वार यूनिवर्सिटी से इसमें एमए कम्प्लीट किया, 2 साल का कोर्स। और उसके बाद से मैं लगातार कार्यरत हूँ इसी फील्ड में योग प्रशिक्षक के तौर पर। तो मैं योग अभ्यासी भी हूँ और लगातार मैं योग की प्रशिक्षा भी दे रही हूँ।
1: तो आज आप एक योग स्पेशलिस्ट हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको योगा की तरफ किस बात ने प्रेरित किया।
2: मेरे लिए योगा की प्रेरणा, सबसे बड़ा योग से मिलने वाला जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो प्रेरणा का स्रोत बना। मैंने खुद अनुभव किया कि लोगों में योग किस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा था। वो ना कि उनके सिर्फ शारीरिक बल्कि उनके व्यवहार में भी चेंजेस ला रहा था। तो ये जो अनुभव था यही मेरा प्रेरणा का स्रोत बना और तब से मैंने ये डिसाइड किया कि योग को सिर्फ एक बीमारी के इलाज के तौर पे नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना है।
1: ये आपने काफी अच्छा बताया है कि आप जानते हैं कि जो हमारे यूथ्स हैं वो योगा को भूलते जा रहे हैं, तो इसी वजह से आज वर्ल्ड योगा डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है हमारे यूथ्स के लिए।
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अवेयरनेस के लिए हम सभी आज जैसे बैठकर बात कर रहे हैं इस बारे में, 2015 से हम योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे, और इसी तरह आगे वाले दिनों में हम 21 दिसंबर को जो हम योगा डे मनाएंगे वो। और इसका स्पेसिफिक महत्व भी है क्योंकि ये दिन माना जाता है कि सोलिस्टिक जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जिसमें इसको मानते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक चेतना के स्तर के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: योगा डे मनाने का या इंटरनेशनल योगा डे जो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों के बीच में योगा की जागरूकता को फैलाना और लोग इसको अपने जीवन शैली में स्वास्थ्य के रूप में अपनाएं, ये इसका मोटिव है।
1: अच्छा, कई सारे यूथ से है जो ये सोचते हैं कि योग का मतलब बस कुछ आसन करना होता है, लेकिन क्या ये सच है कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से जैसे फिटनेस, तनाव कम करना या फिर एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग अलग अलग प्रकार के होते हैं?
0: जी बिल्कुल। तो जैसे आपने खुद ही क्वेश्चंस में ही लोगों को अवेयर कर दिया कि योग का सिर्फ एम आसन तक सीमित नहीं है
1: जी।
0: योग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे बता देते हैं। जो मेजरली जिन पार्ट्स को हम जानते हैं वो अष्टांग योग है, जिसमें आपने सुना होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो एक पार्ट हो गया। इसी तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। जैसे हम सारे लोगों का बिहेवियर अलग होता है, सबका योग के रिजल्ट पाने का रास्ता भी अलग है। तो उसी तरीके से जैसे अष्टांग योग है, वैसे ध्यान योग भी है, जहां पर हम ध्यान को अपने मन पर कंट्रोल पाने के लिए, इसी तरह ज्ञान योग है जहां पे हम नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं, इसी तरह से राज योग है, इसी तरह से हठ योग है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। तो सब अपने अकॉर्डिंग किसी भी माध्यम से इसको अपना सकते हैं। मोटिव सबका और इम्पोर्टेंस सबका और एम सबका एक ही है, सामंजस्य को बनाए रखना और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना।
1: बिल्कुल सही कहा है। तो अगर जिसको जो जरूरत है वो उसके अकॉर्डिंग अपना योगा कर सकता है,
0: मार्ग चुन सकता है।
1: तो अगर कोई यूथ योगा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा योगा या प्रैक्टिस सबसे उपयुक्त रहेगी?
0: तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हमें बहुत ज्यादा कोई कठिन अभ्यास से शुरू नहीं करना चाहिए, हमें बेसिक और बहुत सरल से करना चाहिए। मैं कुछ आसन के नाम बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार, सभी लोगों के बीच ये बहुत प्रचलित भी है, तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं, आप उससे कर सकते हैं। सिंपल मूवेबिलिटी से कर सकते हैं। कुछ आसन है जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन जिसको बोलते हैं, भुजंग आसन, ये सब मूवेबिलिटी लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और हमारी बॉडी में और हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर आते हैं। और इसी के साथ आप प्राणायाम को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है और थोड़ा सा ध्यान, तो इसके जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं।
1: तो ये काफी अच्छी चीज है, आपने बताई भी है कि शायद यूथ्स को योगा को करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: ताकि जो उनका मेंटल स्ट्रेस है, एनजाइटी है, वो दिनों दिन हमारे यूथ में बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे प्रेशर्स को, मेंटल प्रेशर्स को, स्ट्रेस को, एनजाइटी को, अगर जो यूथ्स है हमारे जो सामना कर रहे हैं इन सारी चीजों को, तो ऐसे में योगा उनके लिए कितना यूजफुल हो सकता है?
0: जी बिल्कुल। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो आपसे शिकायत करेगा कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एनजाइटी हो रही है। तो एक्चुअली डिप्रेशन और एनजाइटी है क्या, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा। तो जो हम डेली लाइफ में छोटे छोटे तनाव लेते हैं, अगर हम इसका मैनेजमेंट नहीं करते, इसको डील नहीं कर पाते, तो ये एनजाइटी और डिप्रेशन का रीजन बन जाता है। अब योग यहाँ पर क्या करता है, इस स्टेज में जब उनका नर्वस सिस्टम एक्टिव मोड में चला गया है बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्या करता है, योग के जो अभ्यास है, प्राणायाम है, ध्यान है और कुछ आसन है, जब हम इनको करते हैं तो हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है और जो हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो उसको कंट्रोल करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हम काम फील करते हैं और धीरे धीरे हम इस स्टेज से निकलकर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
1: ओवर थिंकिंग की जो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे योगा का क्या बेनिफिट होगा?
0: इसमें योग कैसे हेल्प कर सकता है आपको, आप अगर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के टाइम पे जो मन भाग रहा है उस मन को स्थिर करके आप वर्तमान में ले आइए कि मैं वर्तमान में धीरे से गहरी सांस भरूंगी, मैं अपने पूरे ध्यान को अपने ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करूंगी। जैसे ही आप ये करते हैं मन का भागना रुकता है और आप स्थिर हो जाते हैं, तो आपके माइंड में जो है अल्फा वेव्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अल्फा वेव्स का काम ही ये होता है कि आपको तुरंत रिलैक्स कर देना, तो आपका माइंड फ्लाइट एंड फाइट मोड से रेस्ट एंड रिकवरी मोड में चला जाता है और आप इस अपनी प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा है। और शायद जो मेरे यूथ्स हैं जो सुन रहे हैं, वो शायद आज से ही योगा को करना स्टार्ट करेंगे,
0: करना भी चाहिए,
1: ताकि जो इनकी ओवर थिंकिंग है ना वो सारी खत्म हो सके। तो इसलिए शायद उनके लिए योगा काफी बेनिफिट है और उनके लिए यूजफुल भी होगा। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एडिक्शन का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है और हम यूथ्स को तो मोबाइल एडिक्शन का कीड़ा कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अगर मोबाइल एडिक्शन के दौर में योगा फोकस और कंसंट्रेशन को किस तरह बढ़ाता है?
0: किसी भी चीज का एडिक्शन जो होता है वो हमारे लगातार अभ्यास से होता है। हम कोई भी चीज को अगर लगातार करने लगते हैं तो वो एडिक्शन बन जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।

0: तो जैसे ही आप देखेंगे ये ज्यादा मोबाइल जब आप यूज करते हैं आपका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है। और एक्चुअली हम मोबाइल ज्यादा यूज करने क्यों लग रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। जब हम ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, ज्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया रिक्वायरमेंट करती है हमारे मन को खींचने का। तो यहाँ पे योग कैसे काम करेगा, जब आप योग अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली किसी चीज की नीड है नहीं, आप खुद ही अभ्यास कर रहे हैं और उसमें आप सीख रहे हैं, आप उसमें अपनी प्रैक्टिस को आज आप जो कम कर पा रहे हैं उसमें ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं, आप न्यू कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्फ अवेयर हो रहे हैं कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर स्ट्रांग हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो छोटी छोटी चीजें आपको दूसरों से प्रशंसा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप खुद अवेयर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो शॉर्ट टाइम आपको डोपामाइन बार बार मिल रहा था वो रियल हैप्पीनेस आप समझ जाते हैं कि रियल हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है। तो अवेयरनेस लाता है योग के अभ्यास में, और अवेयरनेस आपको बताता है कि आपको कितनी देर क्या यूज करना है, क्या आपके लिए बेनिफिट है, किसके साइड इफेक्ट्स है। तो इस तरीके से आप इस एडिक्शन से धीरे धीरे करके बाहर आ सकते हैं।
1: तो जैसा कि अभी आपने बताया कि मोबाइल एडिक्शन के बारे में, तो मोबाइल एडिक्शन के साथ साथ हम जानते हैं ना कि हमारी उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह किसी को कॉलेज जाना, स्कूल जाना, या फिर कोई जॉब वाला पर्सन है तो वो जॉब के लिए निकल जाता है, ऑफिस वाला तो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो अगर किसी के पास बिल्कुल थोड़ा सा समय हो, 15 मिनट्स ही हो, तो वो योग को किस तरह कर सकता है?
0: जी, इसमें दो चीजें बताना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम है नहीं।
1: जी,
0: सभी के पास सेम इक्वल टाइम है 24 आवर्स का। प्रॉब्लम ये है कि हम सब बिजी तो है लेकिन हम प्रोडक्टिव कितना है हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। दूसरी चीज ये है कि अगर हम मान भी ले कि हम बहुत पैक्ड शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, अपने करियर, अपनी स्टडीज और सोशल मीडिया, जो कि जरूरी भी है आज के टाइम में, अगर हम ऐसे शेड्यूल में हैं, तो हम अगर सिर्फ ये सोचे कि 15 मिनट्स का टाइम है तो क्या करना चाहिए, या डाउट्स जैसे आपने पूछा बहुत से लोगों के मन में आएगा। तो सबसे पहली चीज ये कि आप अगर रेगुलर करते हैं ना, तो वो 15 मिनट्स भी आपके लिए मिरेकल रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन 15 मिनट्स में क्या करना चाहिए वो आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 मिनट्स का टाइम निकालिए उसमें वार्म अप के लिए, थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रिस्ट मूवमेंट कर लेते हैं, नेक रोटेशन कर सकते हैं, आर्म रोटेशन कर सकते हैं, हल्का सा वार्म अप, थोड़ा सा मूवमेंट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 3 राउंड सूर्य नमस्कार कर लिया, हार्डली आपके 3 मिनट्स जाएंगे तो 5 मिनट्स में आपने ये वाइंड अप कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में आप क्या करेंगे, कुछ पॉस्चर्स करेंगे, उनमें आप सिटिंग पॉस्चर्स, स्टैंडिंग पॉस्चर्स और लेट के करने वाले आसन। तो अगर हमने 3 आसन खड़े होके कर लिया, ताड़ासन कर लिया, ट्री पोज कर लिया, वृक्षासन, ऐसी सिटिंग बैठ के करने वाले आसन में कुछ ट्विस्टिंग कर लिया, जैसे कि वक्रासन है, और बैठ के करने में मंडूकासन है, जो कि सभी को पता है कि डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल होता है। वेट लॉस के लिए आपने ट्विस्टिंग पॉस्चर्स जो है वो कर लिया, या आपने इसमें पश्चिमोत्थानासन है बैठ के करने वाले, सिंपल सिंपल पोजेज है। इसके साथ लेट के करने वाले में भुजंगासन कर लिया आपने, ये 5 मिनट्स इतना सफिशियंट है। जो बाद के 5 मिनट्स बचे उसमें आपने 2 मिनट का टाइम दे दिया अपने ब्रीदिंग के लिए, या 2.5 मिनट का आपने प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम या भ्रामरी, और इसी के साथ बचे हुए टाइम में 2 से 3 मिनट में थोड़ी देर बिल्कुल शांत मौन के अभ्यास में बैठ के आपने ध्यान कर लिया, कि पूरा ध्यान अपने ऊपर रख के, और इस तरीके से आप अपने 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: तो आई थिंक 15 मिनट्स हम लोगों के लिए सफिशियंट है योगा करने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ ना करने से बहुत बेहतर है कि आप कंसिस्टेंट हो कर।
1: जी बिल्कुल, आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि फिजिकल फिटनेस के लिए हम यूथ्स को जिम जाने का ज्यादा क्रेज है।
0: बिल्कुल,
1: और वो जिम को ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ योगा और जिम के बारे में, तो ये दोनों सेम है या फिर हम इनको अलग अलग बोल सकते हैं?
0: तो जिम और योग कुछ अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि जिम में हम फिजिकल फिटनेस पे, मसल्स स्ट्रेंथ पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं योग में हम मूवेबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल पीस पे, बिहेवियरल चेंजेस पे, इमोशनली स्टेबिलिटी पे, ये सारे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, उसके लिए सिर्फ जिम करना पर्याप्त नहीं होगा, आपको इसके साथ साथ बैलेंस अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों ही पूरक है, लेकिन दोनों के आपको रिजल्ट्स किस लेवल पे चाहिए वो डिपेंड करता
1: है। तो इसका मतलब है कि आप जिम भी कर सकते हैं,
0: जिम भी कर सकते हैं, पर
1: योगा भी कर सकते
0: हैं, उसके साथ और भी चीजों को एड ऑन करना पड़ेगा, डाइट है या सभी चीजें, हमारे होलिस्टिक अप्रोच हो रहेगी।
1: क्या योगा केवल सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है या फिर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और सेल्फ

0: कॉन्फिडेंस में भी योगदान देता है।
1: जी, जो योग है वो हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में क्या होता है जब आप योग की प्रैक्टिस खुद करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होने लगती है, आपके अंदर धैर्य आता है, आपके अंदर पेशेंस आता है, आप खुद से डिसीजन लेना सीख जाते हैं, आपको बाहर की प्रशंसा की नीड नहीं होती। तो बिल्कुल योग जो है वो लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करने में मदद करता है।
0: साथ ही साथ अभी हम लोग ये देख रहे हैं ना कि हम लोगों के पास यूथ है जो उनके पास एग्जाम प्रेशर और करियर का ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उसके लिए उस तनाव को कम करने के लिए वो ऐसे कौन से प्राणायाम है या कोई टेक्निक्स है योगा की जिसको करके वो इन सारे प्रेशर्स को कम कर सकते हैं?
1: जी, यहाँ पे जो योगा प्रेशर या तनाव की बात की जा रही है, जनरली ये हो जाता है कि हम फोकस नहीं हो पाते हैं, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऐसे प्रैक्टिसेस जो फोकस को बढ़ाते हैं। तो योग में कहते हैं कि आप जो भी बैलेंसिंग पोजेस करते हैं वो तभी कर पाते हैं जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो जैसे कि ट्री पोज है, ये एक बैलेंसिंग पोज है। और जब आप एडवांस प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो आप शीर्षासन भी कर सकते हैं, आप हैंडस्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल प्रैक्टिसेस की बात करें तो आप पढ़ाई के बीच से थोड़ा सा टाइम निकाल के अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है और कपालभाति है, ये इस तरीके कुछ अभ्यास हैं जो आप बैठ के आराम से कर सकते हैं और ये आपके फोकस को बढ़ाएंगे और स्ट्रेस को तुरंत कंट्रोल कर देंगे।
0: कि हम सभी को टाइम तो देना पड़ेगा करने के लिए, योगा करने के लिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो शायद हम कोई भी चीज को कर नहीं सकते हैं।
1: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: पर कई सारे लोगों को लगता है कि योगा जो है बहुत स्लो है, बोरिंग है, तो आप उन्हें योगा के लिए कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी कि योगा कोई स्लो या बोरिंग नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छा आसन है?
1: जी, तो ये जो धारणा है इसको तोड़ने का सबसे पहला आपको यही बताएंगे कि जो हमें ये लगता है ना कि ये स्लो है, योगा स्लो नहीं है, हम फास्ट भाग रहे हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं। तो योग क्या करता है, हमें हमारी गति पर नियंत्रण करना सिखाता है, शायद इसलिए वो हमें स्लो लगता है। और ये हमें तब तक स्लो लगेगा जब तक हम इसको मोबाइल पर और लेटे लेटे रील स्क्रॉल करते हुए देखेंगे। जिस दिन हम खड़े होकर योगा मैट ले लेंगे और हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम खुद जानेंगे कि ये स्लो नहीं है, ये हमारी दिनचर्या को किस तरीके से फ्रेम करता है।
0: अगर कोई योग मंत्र या डेली हैबिट है जिसे हर यूथ अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है,
1: तो एक योग मंत्र के रूप में आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले फोन को ऑन ना करें। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे ही आप आंख खोलें तुरंत आप बैठकर ब्रीथ, एक गहरी सांस ले लें और फिर धीरे से सांस छोड़ें और फील करें कि आप रिलैक्स और आप ग्रेटफुल फील करें।
0: तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि आप हमारे सारे यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं?
1: जी, मेरा मैसेज तो यही होगा कि ये दुनिया जो है, ये जिंदगी जो है, हमें भागना सिखा रही है। योग हमें स्थिर होकर खुद से संबंध बनाना सिखाता है, खुद को जानना सिखाता है। तो आज से ही आप चाहे 15 मिनट ही सही पर हर रोज 15 मिनट निकालिए और योग का अभ्यास जरूर करिए। अपनी फैमिली को भी बोलिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने योगा से जुड़ी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, योगा सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है बल्कि मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाने की भी कला है। तो इस वर्ल्ड योगा डे पर सिर्फ एक दिन योगा करने का संकल्प नहीं लीजिए बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने का भी संकल्प लीजिए। आपका बेहद धन्यवाद।
2: दोस्तों, विश्व योग दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, भागती जिंदगी ठहरते कदम, योग का संग। हमने सुनी ये भेंट वार्ता, भेंट वार्ताकार थी गुलनाज बानो और भेंट करता थी चंचल। इसी के साथ ही आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
5: लग जागने पे फिर,
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: कल लाए होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर चली।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों योग भारत की प्राचीन विरासत है और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। ऐसे में योग के क्षेत्र में करियर बनाना एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है। योग में करियर की असीम संभावनाओं से भरा है। आप एक सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर थेरेपिस्ट रिसर्चर या कॉरपोरेट बैलेंस कोच बनकर स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में बेहतरीन आय और पहचान बना सकते हैं, जिसमें आप योग शिक्षा पूरी करने के बाद योग शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में फिटनेस सेंटर जिम स्कूलों या निजी तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं चला सकते हैं और योग थेरेपिस्ट के रूप में अस्पतालों वेलनेस सेंटर्स और क्लिनिक में मरीजों को बीमारियों जैसे मधुमेह ब्लड प्रेशर के अनुसार योग चिकित्सा दे सकते हैं और अपना खुद का योग स्टूडियो चला सकते हैं या योग रीस्टेट भी कर सकते हैं और विश्वविद्यालयों में योग प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसमें योग कोर्स में आप CTY PG डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और भारत के प्रमुख सरकारी योग कॉलेजों में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ चंडीगढ़ शामिल है। ये संस्थान योग में सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कराते हैं। प्रवेश मेरिट और प्रवेश परीक्षा CUCT विश्वविद्यालय स्तर के आधार पर होता है और झांसी से मुंदेलखंड विश्वविद्यालय से भी आप योगा की डिग्री या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो
1: कहाँ
5: एडमिशन कराने,
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।
8: हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों गर्मियों में छाछ मट्टा पीना एक अमृत के समान है। यह शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके नियमित सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है, एसिडिटी शांत होती है और शरीर को भरपूर कैल्शियम और ऊर्जा मिलती है। तेज धूप और गर्मी में छाछ शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और शीतलता प्रदान करता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड पेट की जलन अपच और गैस की समस्या से राहत प्रदान करता है। मसालेदार खाने के बाद एक गिलास छाछ पीने से पेट में बनने वाला एसिड शांत होता है और सीने की जलन दूर होती है। छाछ कैल्शियम और विटामिन डी का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। छाछ में कैलोरी और वसा की मात्रा बहुत कम होती है। यह पेट को भरा हुआ रखता है जिससे बेवजह भूख नहीं लगती है। दोस्तों छाछ के फायदों को और बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा काला नमक और पुदीने की पत्तियां मिलाकर पिए। यह इसके स्वाद और पाचन गुणों को कई गुना बना सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म इंसाफ से और जिसमें आवाजें हैं सोनू निगम अनुराधा पौडवाल की।

दोस्तों फिल्म क्रेश से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में हमने सुना ये बहुत प्यारा सा गीत। इसी के साथ ही दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जल्दी से उठा लीजिए पेन पेपर और नोट कीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी। हमारा पिन कोड है 284128। इसी के साथ ही अब दीजिए अपने दोस्त रोहित कुमार को कार्यक्रम युववाणी से इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी, स्वर था हरिओम शरण का। भजन संध्या इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए अब सुनिए प्रीति सागर के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने प्रीति सागर के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। आकाशवाणी के झांसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला भजन, स्वर है उदित नारायण का।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: जब बीती कल की मिठास और

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: भजन संध्या में आप सुनिए नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे हरिओम शरण, प्रीति सागर, उदित नारायण, नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं। इसके साथ ही भजन संध्या अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनने वाले हमारे सब किसान भैया बहनों को राकेश भैया की नमस्कार। और भैया देखो, आज है कछु खास दिना, यानी के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और देखो, जब योग की बात आउत है तो देखो हमारे कितने मनीषी भय, कितने बड़े बड़े योग के योगाचार्य भय, जिनने योग के माध्यम से और कई ऐसी जटिल बीमारियों को इलाज के माध्यम से बताओ है। और आजकल अपन देख रहे कि अपने आम जिंदगी में जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, ये आम बीमारियां हो गई। हर चार पांच लोगों में एक व्यक्ति को इनमें से कोनो न कोनो बीमारी जरूर मिलत है, यानी कि 20-25% लोगों को

0: शुगर और उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और मोटापा तो अपन देखते ही हैं। काहे के जो सब एक तो खान पान से होते हैं और दूसरी अपनी जो अनियमित दिनचर्या रहता है उसकी वजह से होते हैं। तो आज की ही दिवस पे हम सब जो तो कर ही सकत के जो 24 घंटा अपने पूरे दिन के होते हैं उनमें से आधा एक घंटा निकाल के अगर हम योग और प्राणायाम करें तो ये जो बीमारियां हैं मोटापा है डायबिटीज है डिप्रेशन है ब्लड प्रेशर है और भूल भे की बीमारी है ये सब बीमारियों से अपन दूर रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन लंबी उम्र के साथ भी अपन स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इस साल की जैसी के थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग यानी के जा थीम ई बात पे जोर देते है के नियमित योग अभ्यास के जरिए बढ़ती उम्र में भी हम शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकत मानसिक रूप से संतुलित रह सकत और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। देखो बढ़ती उम्र में आत्मनिर्भर रहे वो सबसे बड़ी बात है कहे के आज की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से आत्मनिर्भर रहने की सबसे बड़ी चुनौती है कहे के जिस तरीका से जो जो हमने बीमारियों को नावलव है जो फैल रही हैं इनसे बचाव को अगर अपन को बिना पैसा को इलाज करने तो अपन अपने जीवन में नियमित रूप से योग करें प्राणायाम करें तो हम बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो अपन को परेशान करते हैं उनसे दूर रह सके तो एक स्वस्थ जीवन जी सकते बिना पैसा के। और हाँ अगर हम आधा घंटा भी योग करते हैं 24 घंटा में तो पूरे दिन के लाने या 24 घंटा के लाने अपन को एनर्जी मिल जाती ऊर्जा मिल जाते हैं तो हम अब दुगने और तिगने वेग से अपने काम भी कर सकते हैं अपनी खेती किसानी के भी काम कर सकते हैं और दूसरे जो भी अपन काम कर रहे हैं उनमें भी अपनो मन लगत है। और देखो योग पे तो अगर अपन बोलवे पे आ जाए तो कई घंटन तक बोल सकते हैं और उनके ऐसे फायदा है। तो आज के दिना हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो भी सुनने वाले श्रोता है किसान भैया बहन है सबसे जोई के एक आधा घंटा अपन रोज नियमित रूप से लेकिन योग के लाने प्राणायाम के लाने निकालो तो अपन बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनमें अपनों हजारों रुपया खर्च होते हैं बिना खर्चा के भी अपन स्वस्थ रह सकते हैं। और देखो जैसो के आज को दिन है यानी कि रविवार है और रविवार के दिन हम खास कार्यक्रम लेके आउट हैं RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला और आज ई पाठशाला को भाग 7 अपन को सुनवा रहे हैं। इके प्रायोजक हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और आज को विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अपन देख रहे हैं कि अपने आसपास जो जंगल हैं जो वृक्ष हैं वे कम हो जा रहे हैं तो हम खेती किसानी के साथ साथ सघन वृक्षारोपण कैसे कर सकते हैं तो आज को विषय भी जो है कि सघन वृक्षारोपण चुनौतियां एवं समाधान। और विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से हमारे स्टूडियो में आए थे और उनसे बातचीत करी थी अमरदीप भास्कर ने तो बिना देर करें हम अपन को सीधे ई कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। तो सुने आप जो भाग 7 RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला को
1: खेत से खलिहान तक बीजों के चयन से लेकर आधुनिक तकनीक के उपयोग तक कृषकों के समग्र विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु करोड़ों किसानों के हित में प्रयासरत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी लेकर आया है कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य आदि की वैज्ञानिक जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से आकाशवाणी झांसी द्वारा प्रसारित RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला।
2: किसान भाइयों नमस्कार। RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला के भाग 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आप तो जानते ही हैं कि खेतीबाड़ी में आप बहुत सारी फसलें लेते हैं फसलों के साथ साथ आसपास जो वृक्ष हैं जो पेड़ पौधे हैं उनका भी खेतीबाड़ी में बहुत महत्व है। खेतीबाड़ी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं वृक्ष हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

0: और आज के कार्यक्रम का जो विषय है सघन वृक्षारोपण चुनौतियां एवं समाधान, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आए हैं।
1: डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत सारी फसलें लेते हैं और फसलों के साथ साथ मेड़ों पर या खाली जमीन में वृक्षारोपण भी करते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों के लिए वृक्ष कितने लाभदायक हैं और वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए सघन वृक्षारोपण क्या है और इससे क्या लाभ किसान भाइयों को हो सकता है।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सघन वृक्षारोपण के बारे में आपको जानकारी अवगत कराता हूँ। सघन वृक्षारोपण का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से अधिक संख्या में वृक्षों का रोपण करना
0: जी,
2: ताकि कम समय में हरित आवरण बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन अवशोषण, जैव विविधता संवर्धन तथा स्थानीय आजीविका को सुदृढ़ करना है
0: जी,
2: ये इसका अर्थ।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि वैज्ञानिक विधि से हम जो वृक्षारोपण करते हैं और उससे जो लाभ होता है उसको हम सघन वृक्षारोपण कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई आमतौर पर मेड़ों पर या खेतों के आसपास बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, तो सघन वृक्षारोपण में खेतों के बीच में या खेतों के आसपास कौन से वृक्ष लगाएं जिससे किसान भाइयों को उन वृक्षों से लाभ मिले।
2: जो आपने बात कही कि कौन से वृक्षों का चयन किया जाए, तो सर्वप्रथम किसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उसको चारा पत्ती चाहिए ताकि वो अपने जानवरों को चारा दे सके। दूसरा, वो अपना ईंधन के तौर को प्रयोग में ला सके और कुछ इमारती लकड़ी का भी वो प्रयोग कर सकता है, इमारती लकड़ी को भी बेच सकता है। जैसे सागवान का वो प्रयोग कर सकता है इमारती लकड़ी के लिए, बांस को वो अपने खेतों में लगा सकता है ताकि उसको जो है जानवरों के लिए चारा पत्ती मिले। और भी बहुत सारे वृक्ष हैं
0: जी,
2: तो उसकी जानकारी हम अलग से यूनिवर्सिटी में भी मुहैया करवाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने इमारती लकड़ी वाले वृक्ष तो बताए हमारे किसान भाइयों को, और फलदार वृक्ष जो है वो सघन वृक्षारोपण में किसान भाई लगा सकते हैं क्या?
2: हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि हमारी जमीन कैसी है। अगर पथरीली जमीन है तो हम जो है तो हम बांस का प्रयोग कर सकते हैं
0: जी,
2: या कीकड़ का प्रयोग कर सकते हैं
0: जी।
2: तो और अगर हमारी बहुत अच्छी खेती वाली भूमि है तो हम मेंढ पे सागौन का प्रयोग कर सकते हैं, आम का भी प्रयोग कर सकते हैं
0: जी,
2: ताकि फसल भी जो है किसान को मिले और उसके साथ साथ जो है उसको कुछ और चारा पत्ती वाले वृक्ष भी वो लगा सके ताकि उसकी अतिरिक्त आय भी बढ़ सके।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसान भाइयों के पास जैसी जमीन है वैसे वृक्षों का चयन किसान भाई कर सकते हैं, और जो किसान भाई पशुपालन करते हैं तो आपने बताया कि वृक्षों की पत्तियों का उपयोग किसान भाई चारे के रूप में कर सकते हैं, और अगर किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी के साधन है, बढ़िया जमीन है, खेत की सुरक्षा है, तो फलदार वृक्ष भी किसान भाई लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अब बात आती है वर्तमान समय में सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है।
2: वर्तमान में समस्या क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 40 करोड़ आबादी थी
0: जी,
2: आज जो है आबादी पहुंच गई है 125 करोड़, भूमि हमारी कम हुई है
0: जी।
2: तो हमें कम भूमि में ज्यादा लोगों को आय वर्धन करवाना है, उसी से हमें पालन पोषण करना है जितनी जनसंख्या
0: जी,
2: तो हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा ताकि जो हमारी भूमि पे भार वो कम हो सके
0: जी। डॉक्टर साहब, फसलें तो किसान भाई लगाते ही है, लेकिन अगर फसलों के साथ साथ वृक्षारोपण करें, फलदार वृक्ष लगाएं या इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाएं, तो वो किसान भाइयों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई जो खेतों में या खेतों के बीच में या मेड़ों पर जो वृक्षारोपण करते हैं उससे किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है।
2: उससे किसानों को पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार के लाभ होते हैं। उससे उसको वृक्ष की लकड़ी, ईंधन, चारा, फल और औषधीय जो है, जैसे आपकी त्रिफला है
0: जी,
2: तो उस प्रकार का भी उस पेड़ों से लाभ मिल सकता है। तो त्रिफला के लिए आप जैसे आंवला है, हरड़ है, ये सब भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं, तो ये सब लाभ उसको मिलते हैं वृक्षों से जो है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को बताई कि किसान भाई जो औषधीय वृक्ष हैं वो भी लगा सकते हैं और उससे किसान भाइयों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, आय उनकी बढ़ सकती है। आंवला हर प्रकार की भूमि में आसानी से हो जाता है। किसान भाई कुछ ऐसे हैं जिनकी भूमि बंजर पड़ी रहती है, उसमें फसलें नहीं होती हैं, तो उसमें किसान भाई वृक्ष लगा सकते हैं और वृक्षों

0: पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदा है, हमारी जलवायु बढ़िया होती है वृक्षों से। डॉक्टर साहब, किसान भाई सोचते हैं कि वृक्ष लगाएं अपने खेतों में, लेकिन उन्हें कई चुनौतियां आ जाती हैं और कई समस्याएं वो समझते हैं कि वृक्षों को कैसे लगाएं, कौन सी विधि अपनाएं। तो आप ये बताएं हमारे किसान भाइयों को कि सघन वृक्षारोपण की प्रमुख चुनौतियां क्या है।
1: प्रमुख चुनौतियां जो किसान के सामने आती हैं, प्रथम क्या है कि उसको कौन सी पौध सामग्री लगा, कौन सी वृक्षों का चयन करना है और कहां से वो उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाली पौध सामग्री लाए, ये सबसे प्रथम उसका जो है ये उसके लिए चुनौती रहती है। दूसरा, जल उपलब्धता करवाना। आपने पौध तो लगा दी, तो पौधा लगा दिया लेकिन उसको जल कैसे मुहैया करवाएंगे। वैसे ही आप जानते हैं कि बुंदेलखंड एक शुष्क क्षेत्र है, जमीन पथरीली है, कौन से वृक्षों के लिए कौन सी भूमि का वो चयन करे, ये सब चुनौतियां हैं। पशुओं द्वारा पौधों को क्षति पहुंचाई जाती है, अगर आपकी पौध लग गई, सरोपण हो गया, तो फिर पौधे जो है उसको पौधों को क्षति पहुंचाने के लिए बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं
0: जी,
1: तो वो भी उसके लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है।
0: डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को बताया कि पथरीली जमीन जो है उसमें चुनौतियां आती है कि वृक्ष किस प्रकार लगाए जाए, कैसे तैयार किया जाए, और आपने बताया कि खेत की सुरक्षा वो भी महत्वपूर्ण है, तभी पेड़ पौधे सुरक्षित हो सकते हैं जब खेत की बढ़िया सुरक्षा हो, सिंचाई के साधन हो। डॉक्टर साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों की जैसे जमीन पथरीली है, उस पथरीली जमीन में किसान भाई कौन से पौधे लगाएं जो आसानी से हो सकें, और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके खेत की बढ़िया व्यवस्था है, उपजाऊ जमीन है, तो उपजाऊ जमीन में किसान भाई कैसे पौधे लगाएं और पथरीली जमीन में किस प्रकार के पौधों का रोपण किसान भाई करें कि आसानी से पौधे हो सकें।
1: जो आपकी उपजाऊ जमीन है
0: जी,
1: उसमें वो सागौन का प्रयोग कर सकता है
0: जी,
1: वृक्षों के तौर पे आप आंवला लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी पथरीली जमीन है उसमें आप कांटे वाले वृक्षों का चयन कीजिए, जैसे बबूल है, तो वो आपकी पथरीली जमीन में भी अच्छी पैदावार देता है और सबल पौधारोपण हो जाता है
0: जी।
1: तो इस प्रकार से आप उसमें भी पौधों का चयन कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, पथरीली जमीन में बांस भी लगाया जा सकता है
1: जी? लगाया जा सकता है, बांस भी लगाया जा सकता है।
0: तो बांस की कौन सी प्रजातियां हैं जिनका चयन करके किसान भाई लगा सकते हैं?
1: पथरीली जमीन के लिए जो है आपका डेंड्रोकलमस स्ट्रिक्टस बोलते हैं
0: जी,
1: उस बांस का प्रयोग कीजिए। एक आपका तीर बांस कहते हैं
0: जी,
1: तो ये दो प्रजातियां
0: लाभ किसान भाइयों को
1: दे सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें पानी की कमी आमतौर पर देखी जाती है, यानी जल संकट किसान भाइयों के सामने बना रहता है, तो आप ये बताएं कि जो पानी की कमी है वो वृक्षारोपण को किस प्रकार प्रभावित करती है?
1: जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी वृक्षारोपण की सफलता के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जल प्रबंधन। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि किसान जो है ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करे। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये होता है एक मटका जो है उसकी जड़ पे रख दिया जाता है, हम बाढ़ के तौर पे सिंचाई नहीं करते
0: जी,
1: हम जो है हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। यही एक योजना भी सरकार ने चलाई थी, वन ड्रॉप पर क्रॉप।
0: कुल मिला के बात यह है कि किसान भाइयों के पास जितनी मात्रा में पानी है उसका सदुपयोग करके और पौधों को बढ़ाया जा सकता है, उनकी बढ़वार की जा सकती है, उनको पानी दिया जा सकता है। और आपने इसके लिए बताया कि ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई से पौधों को तैयार किसान भाई कर सकते हैं, इसमें पानी की बचत भी हो जाएगी और उनके पेड़ पौधे भी तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है अपना, इसमें एक प्रथा है अन्ना प्रथा
1: जी,
0: और इसमें किसान भाइयों के जानवर खुले घूमते रहते हैं
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में जो वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा किसान भाई कैसे करें ताकि उनके सफल वृक्ष तैयार हो सके?
1: जी हाँ, ये अन्ना प्रथा जो है इसमें ये बहुत बुंदेलखंड में बहुत बड़ी पुरानी समस्या है, जानवरों घूमते हैं
0: जी,
1: उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए या तो वो पेड़ के चारों तरफ एक गार्ड बना दें, ट्री गार्ड इसको कहते हैं, ताकि वो खा न सके, या और जिसके पास पूंजी है किसान के पास, तो वो क्या कर सकता है, वो चारों तरफ इलेक्ट्रिकल वायर फेंसिंग जो होती है वो कर सकता है, सोलर फेंसिंग उसका वो प्रयोग कर सकता है
0: ताकि जी, किसान भाई जो है वो अपने खेतों की सुरक्षा पहले करें, तारों की बाड़ लगाएं जिससे पेड़ पौधे भी पशुओं से बचे रहें। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई अगर यात्रा पर जाएं या कहीं और देखें, उन्हें अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं और उनके मन में विचार आता है कि ऐसे ही वृक्ष हम अपने क्षेत्र में अपने खेत में तैयार कर लें ताकि उन्हें उन वृक्षों से लाभ मिल सके, तो आप ये बताएं स्थानीय जो प्रजातियां हैं उनका चयन कितना महत्वपूर्ण है?
1: स्थानीय जो हमारी प्रजातियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: क्योंकि स्थानीय प्रजातियां रहती हैं वो यहाँ की जलवायु के अनुकूल रहती हैं। जो हम बाहर से प्रजातियां, जैसे हम सफेदा लेके आए,

0: तो उसके साथ बहुत सारी कीट बीमारियां आ जाती हैं, तो वो हमारे लिए एक अवसर के बजाय वो एक चुनौती बन जाती है।
1: जी।
0: हमारी स्थानीय प्रजाति क्या है, वो जलवायु के अनुकूल रहती है, तो वो हमारे लिए ज्यादा सफल रहती है, ना कि आपकी विदेशी प्रजातियों को लाने के बजाय। और लोगों को उसके बारे में, खेती के बारे में सब जानकारी भी रहती है, तो वो ज्यादा उपयोगी है।
1: जी डॉक्टर साहब, कुल मिला के किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उनके क्षेत्र के अनुकूल जो पौधों की प्रजातियां हैं उनको ही किसान भाई लगाएं, ये नहीं कि किसी यात्रा पर जाएं या कहीं अन्यत्र जगह जाएं और देखें कि फला जगह ऐसे वृक्ष लगे थे तो उनको हम भी लगाएं। इसके लिए किसान भाइयों को पूरी जानकारी लेनी चाहिए, विशेषज्ञों से मिलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जमीन ऐसी है और हम किस प्रकार के पौधे इसमें लगा सकते हैं, तभी उनका जो बगीचा है या पौधे हैं वो सफल सिद्ध हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान भाइयों की अलग अलग प्रकार की जमीन है, कुछ उसरीली जमीन है या पथरीले इलाके हैं कुछ, तो बंजर या खाली जमीन में वृक्षारोपण का क्या महत्व हो सकता है?
0: जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि बंजर जमीन पे कैसे हम जो है वृक्षारोपण कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि अभी हमें कोई भी जमीन है, पहले उसका मृदा का पहले उसका टेस्ट करवाना चाहिए
1: जी,
0: कि इसमें कौन सी जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, तो वो है कौन से कम है, उसी हिसाब से वृक्षों का चयन किया जाता है
1: जी।
0: जैसे अभी उर्वरक की बात है, उर्वरक हम कौन सी देंगे, तो उसके हिसाब से टेस्टिंग की जाती है
1: जी।
0: हम उसी हिसाब से बंजर जमीन है, रेतीली जमीन है, उसमें अगर हम बांस लगा दें तो वो उस जमीन को फिर से हम जो है हरा भरा कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन में भी इसका बहुत सारा योगदान रहेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बेकार जमीन है या अनुपजाऊ है, तो उस जमीन में यानी भूमि सुधार में वृक्षों की क्या भूमिका हो सकती है?
0: भूमि सुधार में शुरू में हम जो है सीधे हम बहुत अच्छे वृक्ष नहीं लगाते हैं
1: जी,
0: शुरू में हम बांस से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा मिट्टी में बदलाव आता है
1: जी,
0: फिर धीरे धीरे हम उसमें जो है और जो प्रजातियां हैं फिर उसको लेके आते हैं। शुरुआती तौर में हम अच्छी वाली इमारती लकड़ी या अच्छे वृक्ष नहीं लेके आते हैं, धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें हम उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई आमतौर पर जो वृक्ष लगाते हैं उन्होंने गड्ढा खोदा और वृक्ष लगा दिए
0: जी, जी,
1: और जब बरसात शुरू हुई और तभी वो पौधे लाए और उन्होंने गड्ढा खोदा और लगा दिए, ऐसा देखा जाता है, लेकिन आप ये बताएं कि आधुनिक जो तकनीक है वृक्षारोपण को कैसे बेहतर बना सकती है?
0: आधुनिक तकनीकों में जैसे हमारा रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग हुए या जो कृषि विभाग है
1: जी,
0: वो हमें कृषि के बारे में बता सकता है
1: जी,
0: ये सॉइल है, ये इस प्रकार की मृदा है, इसमें ये पौधों का चयन होगा, ये इसमें पौधा लग सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: हम रिमोट सेंसिंग जीआईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं
1: जी,
0: बहुत सारी टेक्निक है जिनके द्वारा हम जो है बहुत वृक्षारोपण क्षेत्रों की निगरानी और सफलता का आंकलन करने में सहायक
1: जी,
0: क्योंकि रिमोट सेंसिंग से क्या होता है, हमें पौधों का कुछ उसमें बीमारी लगती है तो वो सब उसमें जानकारी मिल जाती है, जैसे अगर उसमें इमेज जो बनती है रिमोट सेंसिंग में अगर वो काली आ रही तो हमें पता लग जाता है इसमें बीमारी लग रही है, तो वो जानकारी हम जो है अपने संस्थान से भी देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने एक तकनीक बताई रिमोट सेंसिंग
0: जी,
1: तो किसान भाई भी इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं?
0: हाँ, किसान भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं,
1: तो उसके लिए कोई प्रशिक्षण जरूरी है?
0: हाँ, उसके लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है
1: जी,
0: उसमें हम बता सकते हैं कि ये आपका खेत है, आपके खेत का वो टोपोशीट वगैरह दिखाई जा सकती है
1: जी,
0: और वो यहीं से हम निगरानी कर सकते हैं
1: जी।
0: मान लो वनों में अग्नि लग रही है तो वनों के अग्नि लगने से भी उसे एक ड्रोन से मॉनिटरिंग कर सकते हैं
1: जी,
0: तो ये सब सुविधाएं जो है आधुनिकता हमें इसमें सम्मिलित करनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि आधुनिक तकनीक से वृक्षारोपण किसान भाई करें तो बढ़िया वृक्षारोपण उनका हो सकता है, और आपने एक तकनीक बताई ड्रोन और रिमोट सेंसिंग, तो इसका प्रशिक्षण अगर किसान भाई लेना चाहे तो कहाँ ले सकते हैं?
0: इसके लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, हमारा चारागाह संस्थान है
1: जी,
0: वहाँ भी बहुत प्रकार के हमारे तकनीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आके किसान जो है उसकी जानकारी ले सकता है।
1: किसान भाई आधुनिक तकनीक से वृक्षारोपण अगर करना चाहें तो उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय झांसी में प्रशिक्षण ले सकते हैं, और चारागाह अनुसंधान केंद्र में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तो वहां भी किसान भाई प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसान भाई अगर प्रशिक्षण लेकर और वृक्षारोपण करेंगे तो उनका बढ़िया वृक्षारोपण होगा और जो पौधरोपण है वो अच्छी तरीके से किसान भाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं।
0: सरकार द्वारा 1950 से एक कार्यक्रम तो चल ही रहा है जो आपका

0: जो बरसात में एक कार्यक्रम चलता है, हरित अभियान चलते हैं, सामाजिक वाणी कार्यक्रम चलते हैं
1: जी,
0: नदी तट वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते हैं और बहुत सारे जन भागीदारी के बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चलाती है
1: जी।
0: ये सब कार्यक्रम चल ही रहे हैं, राज्य सरकार भी प्रयास कर ही रही है, केंद्रीय सरकार भी हर साल नए नए कार्यक्रम चलाती है
1: जी,
0: एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सरकार द्वारा भी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किसान भाई उनसे जुड़कर लाभ ले सकते हैं और ग्रामीण स्तर पर किसान भाइयों को पौधे उपलब्ध भी सरकार के द्वारा समय समय पर कराए जाते हैं। तो किसान भाई खाली जो जमीन है या खेत के बीच में लगाना चाहें तो किसान भाई पेड़ पौधे लगा सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, सघन वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए किसान भाइयों के लिए आपके क्या सुझाव हैं?
0: हमारा सुझाव यही है, सर्वप्रथम जो किसान है वो स्थानीय जो प्रजातियां हैं उनका चयन करे, विदेशी प्रजातियों के चयन के ना जाए। जैसे सफेदा है, सफेदे का आपने उदाहरण देख लिया, वो पूरी भूमि को बंजर कर देता है। और फिर अगर आपने एक प्रजाति का चयन कर लिया तो उसके बाद गुणवत्ता वाले पौध सामग्री का उपयोग करें, जिसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बोलते हैं, वो करें। तीसरा, जल संरक्षण उपायों को अपनाएं और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना
1: जी,
0: जैसे आपने अन्ना प्रथा की बात कही, तो हम सबको मिलजुल के इसमें भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी
1: जी।
0: और पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण के लिए तारबंदी या आप ट्री गार्ड का प्रयोग कीजिए और आधुनिक तकनीक को जरूर इसमें सम्मिलित कीजिए
1: जी।
0: तो ये सब अगर उपाय करते हैं तो जरूर हमारा वृक्षारोपण एक सफल कार्यक्रम घोषित होगा
1: जी। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि सफेदा ये वृक्ष का नाम है या कोई विधि है, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: सफेदा पेड़ का नाम है जी, इंग्लिश में यूकलिप्टस कहते हैं।
1: अच्छा, लिप्टस का नाम है।
0: यूकलिप्टस जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, लेकिन ये किसानों के लिए एक समस्या का रूप ले लिया।
1: तो जैसे किसान भाई ये यूकलिप्टस या सफेदा का रोपण करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है किसान भाइयों?
0: यूकलिप्टस जो है वो एक इंडस्ट्री के लिए
1: जी,
0: फैक्ट्री जो है जो लकड़ी या पेपर बनाते हैं उसके लिए उपयोग है, लेकिन किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है बुंदेलखंड में वो तो ईंधन के लिए है, जानवरों के लिए है। तो सफेदा वो सब जरूरतें पूर्ति नहीं करता है
1: जी। तो किसान भाई सफेदा यानी लिप्टिस के वृक्ष का चयन ना करें, ये नुकसानदायक है। और इसके अलावा जो आपने वृक्ष बताया उनका रोपण किसान भाई कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
0: हाँ, सफेदा वो किसी एक चौथाई भूमि पे ले सकता है
1: जी,
0: लेकिन वो आपकी वो मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं करेगा, जो चारा पत्ती की है, ईंधन की है
1: जी,
0: या आप कुछ और उससे जो है इमारती लकड़ी लेना चाहें तो उसका वो पूर्ति नहीं करता
1: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती के साथ साथ किसान भाई पशुपालन करते हैं और पशुओं के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी हो सकते हैं, यानी पशुओं को चारा भी मिलता रहे और किसान भाइयों के वृक्ष भी तैयार हो जाएं, इसके लिए कौन सी किस्म के पौधे किसान भाई खेतों में लगा सकते हैं?
0: इसके लिए सर्वप्रथम सबूबूल का एक पेड़ होता है
1: जी,
0: सीरीज है, काला सीरीज है, सफेद सीरीज है, इनसे आप चारा पत्ती भी ले सकते हैं और ईंधन में भी ये प्रयोग होते हैं और इमारती लकड़ी थी, हल भी इसके पहले बनते थे
1: जी,
0: सीरीज के पहले हल भी बनते थे। तो ये भी प्रजातियों का चयन करें तो वो ज्यादा अच्छे
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए यानी किसान भाइयों के लिए चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो देसी प्रजातियां हैं उनको अपनाएं और अपने खेत को खुशहाल बनाएं, कृषि वानिकी को अपनाइए और अपने खेत को बचाइए, सुदृढ़ बनाइए, यही हमारा संदेश है
1: जी। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपने बताया कि वृक्ष हमारे खेतों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं और प्रजातियों के चयन के बारे में एक खास बात हमारे किसान भाइयों को आपने ये बताई कि आपको स्थानीय प्रजातियों का चयन करना है, यानी पेड़ पौधों की जो स्थानीय किस्में हैं आसानी से जो तैयार हो सके उन्हीं किस्मों को आपको अपने खेतों में लगाना है, तभी आप ये जो सघन वृक्षारोपण है उसको सफल बना सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को सघन वृक्षारोपण चुनौतियां एवं समाधान के बारे में इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला का भाग 7 और आज के कार्यक्रम का विषय था सघन वृक्षारोपण चुनौतियां एवं समाधान और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आए थे। अगली कड़ी में हम नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: खेत से खलिहान तक, बीजों के चयन से लेकर आधुनिक तकनीक के

0: उद्योग तक कृषकों के समग्र विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु करोड़ों किसानों के हित में प्रयासरत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी लेकर आया है कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य आदि की वैज्ञानिक जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से आकाशवाणी झांसी द्वारा प्रसारित RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला।
1: तो अभी आप सुन रहे थे RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला को भाग सात, और अब अपन को सुनवा रहे बढ़िया से लोकगीत कलाकार है रजनी अर्जरिया।

हाँ भैया, अब अपन सुन रहे थे रजनी अजरिया को गाओ भजन लोकगीत। और देखो ई बरस अपन देख रहे हैं कि थोड़ा सो बरसात होवे में टाइम लग रहा है, तो और वैज्ञानिक भी बता रहे कि भैया कुछ अनिश्चितता रहे बरसात में, तो अपन खो ई वर्ष जो भी अपनी फसलें चुनने तो ऐसी फसलें चुनने के जो ज्यादा बारिश हो जाए तो भी हो जाए और कम बारिश हो तो भी हो जाए। ऐसा नहीं कि अपन ने ऐसी फसलें लगा ली कि जो ज्यादा ही बारिश में होने और कम बारिश हुई तो अपन घाटों खा जाए, तो अपन को मिली जुली खेती करने के अगर कम बारिश भई तो भी अपन को नुकसान ना होए और ज्यादा बारिश हो तो भी नुकसान ना होए। और जैसे कि आज हमने बात करी थी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आज के दिन हम अपन को जय सीख दे हैं, जय बात करें कि दैनिक दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें और पूरे जीवन निरोग रहें, बिना पैसा के बिना कोनो परिश्रम के अपन अगर रोग रहित रह सकते हैं तो अपन योग जरूर अपने जीवन में शामिल करें। और अब हमारे कार्यक्रम को होगा समय पूरा, तो अब राकेश भैया को देव आ गया। नमस्कार।

0: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: मुकाबला कड़ा मुकाबला, इट्स इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन ऑल द मैचअप्स, की प्लेयर्स, टैक्टिकल शिफ्ट्स विद आर एक्सपर्ट्स। नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आर लिसनर्स। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मुनीश जॉली। मुनीश, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता, और हम चाह रहे हैं कि ऐसी वार्म्थ जो है वो मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड जहां इतिहास रहा है क्रिकेट का वहां पर भी बनी रहे, और बड़ी जल्दी से हम अपने एक्सपर्ट्स को आप सभी लोगों से परिचित कराते हैं। हमारे साथ वैशाली माथुर बैठी हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, स्वागत है आपका वैशाली।
3: थैंक यू।
2: उत्तराखंड नेशन का नाम आप जानते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट

0: हैं और अपने भाव अपनी तलवार के जरिए यानी अपनी पेन के जरिए वो व्यक्त करती रहती हैं। आपका भी बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुनीश, और नमस्कार सारे आकाशवाणी के श्रोताओं को।
0: एंड ऑफकोर्स बीसीसीआई के क्वालिफाइड कोचेज में से एक नाम रविंद्र सिंह जी का जाता है जो मेरे बाई तरफ बैठे हैं, और राइट आर्म अराउंड द विकेट आज बॉल डालने के लिए तैयार हैं कोच साहब।
2: अभी तो आज तो हम बैटिंग करने के तैयार हैं, हरमनप्रीत की देखने की 200वां मैच खेलने जा रही है। आज बॉलिंग भूल जाइए, पहले बैटिंग भी ध्यान लगाइए।
0: मुदिता अभी बहुत जल्द टॉस होने वाला है और जैसे ही टॉस होगा हम अपने श्रोताओं को लिए चलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड। लेकिन ये तो खैर हल्की बातें थी, एक टफ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो?
3: जाहिर सी बात है टीम इंडिया।
0: चक्कर ये है कि आपने भी आज येलो पहना है, मैंने भी येलो पहना है, साउथ अफ्रीका येलो पहन के आएगी। बट वेरी क्विकली वैशाली, इससे पहले कि हम टॉस की तरफ जाएं, बड़ी जल्दी आप इस मुकाबले को कैसे देख रही हैं?
4: मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि इंडिया अगर टॉस जीतता है तो पहले उनको बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग उतनी लाइनअप पे नहीं है अभी।
0: चलिए देखते हैं क्या होता है, सीधे चलते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ टॉस हो रहा है।
5: What are you going to do and why?
6: Not a bad first. Why? Because I think it's a good pitch and we thought if we bat first and put a decent total, that will help us to win the game.
5: You played a bit here previously domestically. How do you think it's going to play?
6: I think it's a very good pitch. The only thing is you have to give some time on the middle and then you can take the game ahead.
5: No player has played 200 T20 internationals. As a young girl growing up, how special is that for you?
6: 200th game, I think, honestly, it's been an amazing journey. I never thought I'll come that far, but I think God has been kind and I'm really thankful to him. And to my family, friend, BCCI, all my teammates, they've been really supporting.
5: And you should have a sellout crowd here at Old Trafford. Looking forward to the atmosphere?
6: Yes, definitely. I think they've been our biggest support. Hopefully, we'll entertain them.
5: And one enforced change for you. Who comes in and are there any other changes?
6: Yeah, Shrenka is missing because of her injury. Place of her, Prema is going to make her debut. And we have one more change. Kranti is resting today. Arundhati is playing.
5: I saw you have a chat with Prema a little bit earlier. What did you say to her?
6: Just to enjoy. I think I'm more nervous playing 200th game and she is someone who looked very calm and hopefully she'll enjoy her game.
5: All the best today.
6: Thank you.
5: Laura, you're bowling first. What would you have done?
7: We probably would have batted as well. Pretty big game for us. We would have liked to put some runs on the board, but hopefully we can restrict them.
5: Pretty much a must-win game for you in this group. What have been the conversations ahead of this one?
7: Yeah, trying not to think about the outcome too much. I think we all know sort of what's at stake today. So just trying to take one ball at a time, stay really present. And I feel like if we play our best cricket, we'll come out on top today.
5: You've had some pretty amazing encounters against India in recent times. Obviously wanted to get revenge from that one day World Cup final, but coming in with some good form against them in the T20s, that must give you confidence.
7: Yeah, definitely. I think it's nice to have won against them pretty recently, but they probably have gotten the better of us at World Cups recently. So yeah, hopefully we can get them back today.
5: Any changes for your side?
7: We got two changes. Danae and Taz are back in, and Sunay and Kayla are missing out today.
5: Some reasons for the changes?
7: Yeah, we just thought it was the best combination to go with today. Obviously, usually a bit slower here, so we thought we'd bring in some batters who are really good against the spin. So hopefully that works today.
5: All the best.
7: Thank you.
5: So the news from the middle is that India have won the toss and will bat first.
3: India has won the toss and elected to bat. Munish, बिल्कुल knockout मुकाबलों वाली feeling आ रही है आज. दोनों ही groups में निर्णायक मुकाबलों का दिन है. वैशाली, India ने bat करना पसंद किया है आज के इस match में. आज का जो match है वो South Africa के लिए it's a must win match. और हम जो अभी मैं बात कर रही हूं कि नॉकआउट मुकाबलों जैसी एक फीलिंग आ रही है, क्वार्टर फाइनल जैसा एक लग रहा है. वहीं भारत के लिए ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी मजबूत करना भी जरूरी है.
4: बिल्कुल, एंड आज का अगर इंडिया टीम मैच जीतती है तो वो फाइनल में सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बना लेती है, और उसके साथ ये क्लैरिटी मिल जाएगी इस ग्रुप में कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दोनों ही सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव बहुत जरूरी है कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है. और अभी हमारे कैप्टन ने दो चेंजेस की भी बात करी है, तो वहां पर प्रेमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूं कि प्रेमा 2025 के वर्ल्ड कप में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है उसमें वो स्टैंड बाय लिस्ट में भी थी, एंड आज वो डेब्यू भी कर रही है. और सबसे अच्छी बात है वो इंडिया ए टीम के लिए ऑलरेडी इंग्लैंड में थी, एंड वहां पे उनको इंडिया कॉल आया, आज वो डेब्यू भी कर रही है. और सबसे बड़ी खास बात ये भी है उनकी, वो यहां पे लेग स्पिन डालती हैं. और सबसे खास

0: बात यह है कि वो रिस्ट बॉलर है, रिस्ट बॉलर को जज करना उतना इजी नहीं होता है और आज उनको अपना ये चांस ग्रैब भी करना चाहिए। एंड बैटिंग लाइनअप की अगर बात करूं तो हमारे बैटर्स को कम से कम उतनी उनको फोकस करना चाहिए कि वो सिक्स पावर प्ले के अंदर, सिक्स ओवर के पावर प्ले के अंदर जितने रन बटोर सकते उतने बटोरे और जितनी कम विकेट हम फॉल करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा।
1: राइट देन, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम मुनी जॉली। अगला सवाल मैं रविंदर सिंह आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पे श्रेयंका पाटिल के बारे में बहुत अनफॉर्चुनेट इंजरी थी, आपको लगता है बहुत बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिए?
2: डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर थी प्लस वो पावर प्ले में जो उनका जो एडवांटेज था बॉल डालने का, वो अब जरूर इंडिया मिस कर रही होगी। और मुझे श्रेयंका पाटिल के जो इस समय जो बैलेंस है टीम का, वो अब प्रेमा रावत से कितना बैलेंस हो पाता है ये तो आज वक्त बताएगा, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा ब्लो है इनसे।
3: उत्तरा अभी बात की वैशाली ने पावर प्ले की, पावर प्ले में सोफारा ओपनर्स आर डूइंग वेल, लेकिन अब पावर प्ले में सामना करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के लीथल बॉलिंग अटैक का। एक एन से मरजन का, दूसरे एन से शबनम स्माइल और फिर इनके अलावा आया बुंगा खा का। आज इंडिया पावर प्ले में कैसा परफॉर्म करता है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आज के मैच का, और इज इट गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ पावर प्ले, इंडिया Indian top order versus South African Pacers?
4: I think it's going to be a battle of who is more hungry and desperate to win. India ke paas advantage ye hai ki do match already jeet chuke hain wo apne, aur South Africa ek hi jeeti hai, ek hari hai abhi, to unke liye zyada zaruri hai ye match jeetna apne chances banaye rakhne ke liye. India ke paas jo baki ke do match hain usme bhi ek team Bangladesh hai where we expect India to do really well, तो प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होगा। बट अगेन जैसा कि पावर प्ले की बात है तो T20 में पावर प्ले में मैचेस हैव बीन वन एंड हैव बीन लॉस्ट। शबनम इस्माइल के वापस आने से ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग हुई है। हमारी बैटिंग में ज्यादा अच्छी चीज ये है कि जो टॉप के तीन चार हमारे बैटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगेन अगर वहां से सामने की तरफ से जिस तरह से बॉलिंग आएगी, अगर पावर प्ले में हम नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मामला टाइट हो सकता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऋचा घोष हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं फायर की है, ना उस तरह से टेस्ट हुई है इससे पहले के दोनों मैचेस में जो नेदरलैंड्स था और पाकिस्तान दोनों के ही साथ। तो प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है जो हमारे टॉप के चार बैटर्स हैं, हरमन, शेफाली, स्मृति और जमीमा। एक्सपीरियंस है, फॉर्म है, रन्स हैं उनके पास, तो उन चारों का परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से आपका टेम्पलेट सेट करेगा कि टीम किस तरफ जाएगी। आपने पावर प्ले की बात की, मुझे लगता है कि इन चारों को पावर प्ले से बहुत आगे और खेलने की जरूरत है, क्योंकि अगर पावर प्ले में ये करते भी हैं और उसके बाद नहीं उस स्टार्ट को भुना पाते हैं तो भी जो बाकी के बैटर्स आएंगे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
1: राइट देन, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं वैशाली इस बात?
0: बिल्कुल, जैसे मैम ने बोला अभी कि मिडल ऑर्डर के बारे में उन्होंने बात करी, तो वहां पर ये चेंज जरूर होना चाहिए कि यास्तिका भाटिया की जगह पे अगर दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष अगर मिडल ऑर्डर पे आते तो बैटिंग लाइनअप थोड़ा बेटर इम्प्रूव दिखाई देगा। तो ये एक कप्तान को सोचना जरूरी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैच है इंडियन टीम के लिए और यहां से अगर जीतते तो आप हम सब जानते हैं कि आगे पहुंच सकते हैं।
1: और एक बहुत बड़ा दिन कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी, 200वां T20 इंटरनेशनल जो है वो खेल रही हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहां पे। हम अपने श्रोताओं को यहाँ पे इनवाइट करें, मुदिता क्या कहती हैं, फोन नंबर्स अनाउंस कर देते हैं? तो दोस्तों हमारे जो स्पोर्ट्स स्पेशल फोन नंबर्स हैं जिसके वजह से आप हमारे इन एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2342-1083, 2342-1085। इससे पहले आपको दिल्ली का कोड लगाना पड़ेगा 011 और उसके बाद 2342-1083 और 2342-1085। हमारे साथ फोन कॉलर्स अगर अभी जुड़ रहे हैं तो देखते हैं मुझे तो कौन है फोन लाइन पर।
3: जी अपना परिचय दें, कहां से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
5: मौका दिया जाता तो उनका भी बढ़ता, उनकी जगह पे किसी बड़े मैच में
1: सर वो अभी टीम में आए हैं क्योंकि श्रेयंका पाटिल इंजर्ड

0: हो गई हैं, तो उनको स्क्वाड के अंदर अभी डाला गया है, तो वो कोई चांस नहीं था कि वो पहले खेल पाती। जी रविंदर जी, रेणुका सिंह
1: देखिए, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। जो श्रृंखला पहले जो आज अरुण जी को लिया है, इन्होंने पहले मैच में इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो कल 2 ओवर 20 रन के आसपास थे, लेकिन उनको पता है कि ये जो यहाँ पे सीम होगा, बॉल सीम होता है, और इसलिए शायद उन्होंने अरुण जी को लिया है। रेणुका सिंह का भी नंबर जब उनको लगेगा मैनेजमेंट को, तो भी उनका आएगा। लेकिन आपने सही बोला कि प्रेमा को इसलिए एक लेग स्पिनर था, एक राइट स्पिनर, एक आपको पता है कि जब खेलता है तो मैच को या तो मैच को बिल्कुल साइड कर देता है। और 4 ओवर में साउथ अफ्रीका के लिए एक लेग स्पिनर, जो कि शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा इस प्रेमा रावत को पहले, तो एक अच्छा रीजन हो सकता है।
2: वैशाली, खिलाड़ी होने के नाते आपसे एक सवाल है कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर राधा यादव है स्क्वाड में हमारे पास, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बड़ा दांव खेला है एक अनकैप्ड प्लेयर को टीम में शामिल करके, जो अभी हमारे श्रोता सवाल कर रहे थे, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर और इतने इम्पोर्टेंट मैच में। स्किल है उनके पास, नंबर्स भी हैं, इंडिया ए के लिए 8 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं उन्होंने, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट T20 सीरीज में शी वॉज द ज्वाइंट हाइएस्ट विकेट टेकर, लेकिन सीधे इतने बड़े मंच पर आने से विल शी बी एबल टू हैंडल अ हाई प्रेशर गेम?
3: ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड है कि आज क्या वो अपना पूरा 100% किस तरीके से देती हैं। एंड सेकेंडली, अगर हम प्रेमा की बात करें तो वहां पे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है इंडिया ए में, जो आपने उनके विकेट्स के बारे में बताया है, तो उस हिसाब से वो इस मैच के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है। एंड वहां पर जिस तरीके से अभी सर ने बोला कि वो एज अ लेग स्पिनर भी खेल रही है, तो उनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है और उनको खेलना भी इजी नहीं होगा। पहले उनको देखा जाएगा, उनकी बॉलिंग को जज किया जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली खेला जाएगा। तो वहां पर जज करने में और कुछ ओवर्स वहां पर हमें बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि न्यू बॉलर को जज करना इतना ईजी नहीं होता है इतने बड़े लेवल पर।
0: वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रेमा रावत की बात करी, वो पावर प्ले में बॉल डालती है लेग स्पिन अगर मौका दिया जाए तो?
3: मुझे लगता है कि पावर प्ले का अगर फायदा उठाना है तो हमें एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ उठाना चाहिए, जो है दीप्ति शर्मा। एंड उसके साथ वो एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि वो कहां पर किस बैटर को कहां पर बॉल डाल सकती हैं और कहां उनका स्पॉट है बॉलिंग का। इस बैटर की डेब्यू प्लेयर से ना करा के हम उनको वहां यूज करें जहां विकेट्स की जरूरत है।
0: वेरी क्विकली उतरा, आई वांट टू आस्क, सिंस इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड you know it's a big day today, yoga day, we'll talk about that a bit later, but then Shefali Verma, you think the way I think that she's a bit inconsistent whether she's going to score today or no, you have a same thought about her?
4: I think Shefali has, I think a lot of people have been very unfair to Shefali, kyunki jab unhone shuru kiya tha to jis tarah se shuru kiya tha unhone wahan pe, to people expected her to go bang bang every game, every innings, and then go and score those big runs. But we have to remember, people evolve, players evolve, she's becoming mature and she has also learned how to handle herself. It took her some time, but yes, I think the inconsistency was more about handling the pressure of what people expect from her every time she goes out, and what the team situation is and what she actually needed to do as a player out there. But I think she's grown, she's become more evolved and mature, she now understands the game better. So wo consistency ab dheere dheere aayegi uske game mein, aur wo aapko uske game mein nazar bhi aata hai. She's not going to go jaisa aajkal hum Vaibhav Suryavanshi ke liye bol rahe hain, she's not going to go bang bang from the first ball. Wow. She's become a mature player, and that's why the consistency has improved in the last few years.
3: एंड हमने यही शेफाली वर्मा का लास्ट मैच में देखा था कि उन्होंने एयर शॉट नहीं खेले थे, ग्राउंडी शॉट्स खेले थे, ये इम्प्रूवमेंट है।
0: वाओ, मैं आपके साथ हूँ लेकिन मेरे को कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होता है ना, मैं मेडिटेटिव मोड में चले जाता हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप को शांत रखता हूँ आंख बंद करके। और आज एक बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो रविंदर भाजी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में योग ने आके कुछ चेंज किया? आप योग फॉलो करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता जो राजधानी है वेस्ट बंगाल की, वहां रेड रोड एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे जाके उन्होंने आज बहुत लोगों के साथ योग दिवस मनाया। आप योग को कैसे लेते हैं अपनी जिंदगी में?
1: देखिए, अभी आपने बोला कि जब भी मैं किसी तरह उसमें रहता हूं तो मैं योगा मूड में आ जाता हूं, यही सबसे बड़ी बात है। ये प्रेशर गेम है, ये प्रेशर, इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर, इतना होता है इनके लिए, तो योगा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में योगा टीचर्स भी, बड़ी बात नहीं कि योगा टीचर्स भी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि इनको

0: को जो अपना फोकस रखना है अपना कई बार तो मैंने देखा कई प्लेयर्स को मेडिटेशन करते हुए देखा अपना फोकस अपना दिमाग को बिल्कुल स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन करने के लिए ये योगा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हुआ है और क्रिकेट का और इवन कई सारे स्पोर्ट्स का और हर लोग मुझे लगता है कि हर प्लेयर उसको जरूर ना कुछ कहीं ना कहीं कितने रूप में फॉलो करता है।
1: वैशाली आपको कैसे इवॉल्व किया योग ने एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट्स बेनिफिटिंग द मॉडर्न स्पोर्ट्स एरा नाउ?
2: योगा का मुझे लगता है कि योगा का ना बहुत पॉजिटिव रोल है सिर्फ एथलीट्स पे ही नहीं बाकी लोगों पे भी एंड अगर एथलीट्स की बात करें क्रिकेटर की बात करें तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो टाइट मसल्स होती है ना वो हमारे हिप्स शोल्डर हैमस्ट्रिंग को खोल देती हैं एंड ये हमारे ना बैटिंग के बैकलिफ्ट बॉलिंग का फॉलो थ्रू एंड फील्डिंग के ड्राइव पे बहुत स्मूथ असर देता है और बहुत स्मूथ फोकस चलता है और अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो योगा हमारे बैटिंग के लिए बैलेंस हमें देता है एंड आपको मूवमेंट डायरेक्शन करने में हेल्प करता है और उसके साथ इसको मेंटल फोकस क्योंकि क्रिकेट एक बहुत लॉन्ग टर्म का बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला गेम है तो उसमें मेंटल फोकस और प्रेशर हैंडलिंग गेम बहुत जरूरी है तो वो योग से ही हमें मिलता है।
3: जी बिल्कुल उत्तरा आपका कोई अनुभव योग को लेकर?
4: मुझे लगता है योग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो जिस तरह से होता है शायद योग से ज्यादा एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल कुछ नहीं है बिकॉज उसके इतने वेरिएंट्स हैं एंड ऑनेस्टली हर किसी के बस का नहीं है वो बैठ के एक घंटा पूरे तरह से ध्यान लगाए और लोगों के लिए फोकस करना या मेडिटेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो गाना सुनते हैं और अपने आप के साथ रहना पसंद करते हैं 5 मिनट के लिए तो म्यूजिक इनकॉर्पोरेट करना अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पे डांस योगा और स्टीम योगा और बहुत सारी चीजें होती हैं तो योग से ज्यादा मुझे लगता है हर किसी को सूट करने के हिसाब से कोई और ऐसी एक्सरसाइज मॉड्यूल अगर हम देखें तो कुछ और है नहीं जिसमें आप अपने हिसाब से योग को ढाल सकते हैं और योग के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एडेप्टेबल मैलिएबल या फ्लेक्सिबल कोई भी एक्सरसाइज का तरीका है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है योग के बाद।
1: आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे मुदिता बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था एंड ऑफकोर्स यूएन में जाके अंतर्राष्ट्रीय योग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को और आज माननीय राष्ट्रपति जी भी जबलपुर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वहां पहुंची थी बट वील कम बैक टू द गेम वेयर ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस रिमेन्स यू नो एट द पीक फॉर द टॉप प्लेयर्स।
3: बिल्कुल रविंदर फील्डिंग की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी शार्प फील्डिंग साइड एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट वन्स इनटू टूज अगेंस्ट देम वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्री सेविंग टीम्स भी है वो तो क्या ये मुकाबला आज रन बनाने से ज्यादा रन बचाने का साबित हो सकता है?
0: देखिए फील्डिंग हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है बैटिंग बॉलिंग तो होता ही है फील्डिंग में आप जितने रन बना सकते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और वो ही कई बार 20 ओवर के मैच में मार्जिन बहुत ही कम लेवल बीच में जो डिफरेंस होता है मार्जिन तो बहुत कम होता है वो ही 2-4 रन लास्ट में वो मैटर करते हैं लेकिन अब वो इंडियन टीम ने भी काफी इम्प्रूव किया है बीच में काफी पहले तो इंडियन टीम की बैटिंग फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब काफी इम्प्रूव किया है लेकिन साउथ अफ्रीकन शुरू से ही मेंस लीजिए या वुमेन दोनों लीजिए कमाल के रहे हैं और अभी तक आपको अगर कोई किसी से भी अगर जो ना भी स्पोर्ट्स जानते हो उससे पूछेंगे कि किसी फील्डर का नाम बताओ साउथ अफ्रीका का तो सबसे पहले उठ के बोल देगा जॉन्टी रूट्स।
1: एब्सोल्युटली और जॉन्टी बनने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है मेन क्रिकेट में बट ऑफकोर्स फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ हम बैटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्मृति मानधना के बारे में बात करना चाहूंगा 142 रन बना के शी इज द टॉप रन गेटर एट द मोमेंट वैशाली 2 consecutive 50s यू थिंक दैट बिल्ड्स अप अ प्रेशर किसी प्लेयर पे एक प्रेशर होता है कि मैंने 2 50 बना दिए वॉर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई?
2: प्रेशर तो हर गेम में होता है हर प्लेयर का होता है और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि साउथ अफ्रीका टीम जो खेल रही है उनके अगेंस्ट उन पे ज्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू स्मृति क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में है और उनको आउट करना बहुत जरूरी है उनके लिए क्योंकि वो एक पार्टनरशिप शेफाली की और स्मृति की पार्टनरशिप के बारे में हमेशा बात होती है और वो वहां पे स्टे भी करते हैं उनको ये पार्टनरशिप बहुत 3000 कुछ समथिंग रन्स की भी है एंड वो पार्टनरशिप तोड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है और शेफाली वर्मा को जिस वे में स्मृति मंदना लास्ट मैच में खिला रही थी उनको बोल बोल के कि आपको किस वे में रुकना है और कहां पे आपको स्टे करना है और कौन सी बॉल को आपको किस वे में करना है तो वो एक है ना एक्सपीरियंस प्लेयर कहलाता है दिखता भी है अंदर से।
3: जी वैशाली टॉप

0: कि आपने बात करी, लेकिन इंडिया हैव शफल देयर बैटिंग ऑर्डर इन द मिडिल ऑर्डर इन बोथ द मैचेस. क्या इससे प्लेयर्स का रिदम बिगड़ता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर शुड हैव क्लियर रोल्स, स्टेबलाइजर हो, एक्सेलरेटर हो एंड देन फिनिशर. आर दोज रोल्स ओवरलैपिंग, और क्या इससे प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग कोलैप्स कर सकती है?
1: प्रेशर तब आता है जब अगर पार्टनरशिप नहीं, आप नहीं तोड़ पाते, तो वो सामने वाली बैटिंग, सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है. लेकिन जहां पर हमारी पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा जो बैटर अंदर जाएगा उस पे प्रेशर ज्यादा आता है. और मिडल ऑर्डर की बात करूं तो वहां पे यास्तिका भाटिया की जगह पे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर हम दीप्ति शर्मा को ऊपर लेके आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट मैचेस में उन्होंने काफी बेटर स्कोर किया है यास्तिका भाटिया को, अगर हम कंपेरिजन करें तो.
2: राइट, देन दो चेंजेस जो हुए हैं, तस्मीन ब्रिट्स और दानी वैन निकर्क अंदर हैं, और सुने लूज और काला रहने के मिस आउट कर रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए. और ताजा खबर यह है कि दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मैदान के बीचों बीच आया है, और आईसीसी का ध्वज और उसकी दाई तरफ भारत और बाई तरफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और प्लेयर्स वहां पे तैयार हो रहे हैं नेशनल एंथम के लिए. बहुत जल्दी से हम यहां पे, रविंदर जी आपसे मैं बड़ी जल्दी जानना चाहूंगा कि इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा है 3.98, साउथ अफ्रीका इज -1.10. ये कांटे की टक्कर, स्पेशली जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट में वो जो फाइनल हमने देखा था, साउथ अफ्रीका जानते हैं कि हमारे को एनआरआर भी मेंटेन करके रखना है.
3: देखिए एनआरआर का तो डिफरेंस रहेगा ही, और इंडिया अभी जो जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा हो चुका है. लेकिन ये देखिए कि इस ये जो आज इंडिया को उस रनरेट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे मैंने देखा है जो चेस करने वाले ज्यादातर जीते हैं, काफी जीते, और जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, लॉरा देख ली, डर्कसन देख ली, इवन क्लर्क जो कि काफी फॉर्म में चल रही है दोनों मैचेस में, तो इंडिया को एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा अफ्रीका अगेंस्ट कम. और उसी को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 20 ओवर्स के मैच में दो प्लेयर्स ही खड़े हो जाते हैं तो मैच को बराबर कर देते हैं.
0: जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. नमस्कार, जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछे.
2: हेलो जी, मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं?
4: अरे आपकी आवाज सुन सुन के बड़ा हो रहा हूं
2: यार. ये कॉम्प्लीमेंट था. जी बताएं. जी बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस से थोड़ा सा उतना खुश नहीं है, एंड ऑफ को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, होता है ना, टेंटेटिव होता है.
3: हरमनप्रीत देखिए, हरमनप्रीत एक अब इससे बड़ा क्या होगा, 200 का मैच खेल रही हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, और अब उनको पता है कि किस मैच में क्या, किस मैच में अपने अपने गेम को किस लेवल पे लेके जाना है. तो ये जो अचीवमेंट है वो अभी तक कोई मेंस भी नहीं पूरा कर पाया जो उन्होंने आज पूरा करके दिखाया. आप चिंता मत कीजिए, जो जरूरत पड़ेगी तो हरमनप्रीत आपको उस समय मैच को जिताते हुए मिलेंगे.
2: उथरा वेरी क्विकली बिकॉज वील हेड टूवर्ड्स ओल्ड ट्रैफर्ड, द रिकॉर्ड से दैट पीपल द टीम्स हू हैव चेज्ड हैव मच मोर percentage in winning the games. You think that's a fearing factor for India? They chose to bat after winning the toss. Anything to concern?
5: I think the kind of players we have, if they do the way, if they play their normal game, records don't really matter much for India, and we have the capacity and the capability to win whether we chase or we set the total. And if they set a high enough total, we have the bowling to restrict the opponent at any level that we want.
0: चलते चलते एक सवाल, रविंदर हरमन को हम लंबे टाइम से कप्तानी करते देख रहे हैं, बट डू यू थिंक शी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन देन एवर बिफोर? जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कर रही हैं, खासकर शफाली वर्मा को जिस तरह से पावर प्ले में यूज किया उन्होंने पिछले मैच में. इसके अलावा डीआरएस को लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप में कई बार सवाल उठे थे उन पर, लेकिन अब उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस दिख रहा है ऑन द फील्ड.
3: बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको पास जो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास, वो वाकई देखने लायक बिल्कुल है। और अब वो मैच्योर क्रिकेटर हैं, पुराने मैं कहता हूं काफी इतने सालों से खेल रही हैं, अब इस समय मेरी इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं हो सकता। और इस समय इंडिया के पास जो हरमनप्रीत है वो एक एसेट है, इस समय वो कितना आगे इस समय चला पाएंगे।

0: और वो देखने वाली बात है। लेकिन हरमनप्रीत का जो वाकई आप सही कह रहे हो, जो जो उनका डिसीजन ले जो ले टेकिंग जो एलिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। डीआरएस को पहले नहीं ले पाते थी, लेकिन अब वो जो डीआरएस जो लेती हैं उसकी वाकई बहुत ही बड़ा रीजन है
1: जी। और चलते चलते प्रेडिक्शंस, उत्तरा आपसे शुरू करते हैं, कितना स्कोर है,
2: जीत का या स्कोर का?
1: बिल्कुल दोनों बताइए।
2: ये चाहते हैं कि इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं।

0: चाहते हैं कि इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका इजी बिल्कुल नहीं आपको जीतने देगी. और टोटल आई थिंक क्लोज टू 200 जाना चाहिए.
1: जी वैशाली,
2: 180 अराउंड.
1: रविंदर,
3: 180 के आसपास सही
1: है. जी बिल्कुल. तो अब देखते हैं, हमारी कमेंट्री टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.
4: फर्स्ट बॉल 20.
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
6: नमस्कार, मैं संजय सरीन अपने साथी कमेंटेटर. किशन कुमार के साथ आज भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप का यह बहुत एक अहम मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर. कुछ देर पहले टॉस हुई और टॉस भारत ने जीती और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. भारतीय टीम आज इस प्रकार रहेगी: कप्तान हरमनप्रीत कौर, जुमेमा रेडरिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मेदाना, यशिका भाटिया, अरुणादिति रेड्डी. आज एक नया नाम जो इस टीम के साथ जुड़ा है वो है प्रेमा रावत, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा. ये होंगे भारत के आज प्लेइंग 11. प्रेमा रावत को स्थान मिला है श्रियंका पाटिल की जगह जो चोटग्रस्त होकर बाहर गई हैं. और आज प्रेमा रावत अपना मैच खेलेंगी, पहला मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का ये इस 2026 का. और साउथ अफ्रीका की टीम अपने कप्तान लॉरा वॉल्वर्डाट के साथ टीम में उतरेंगी. मजीना कैप, टूमी शेखुखुने, शिनालो राफ्ता, क्लो टायसन, नानकुले मलाबा, नंदिनी डक्लाक, एनरी डक्सन, डैनवेन निकक और आयोबोंगा खाका जो उनकी बॉलर हैं, तेज गेंदबाज, ये टीम में शामिल रहेंगी. और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में दोनों टीमें अब बिल्कुल सेट हैं. भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी. टॉस भारत ने जीता जैसे मैंने आपको बताया. स्मृति मंदाना और क्रीज पर मौजूद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का ये अहम मैच खेला जाएगा. शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना इस समय क्रीज पर हैं. शेफाली वर्मा का रैंक 7 है इस समय और स्मृति मंदाना.
7: चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
8: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार. तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया. बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में. सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा. वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई. डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया. कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली.
7: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर. विविध भारती आपका जीवन साथी.
9: जय माला.

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित न करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलख गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो।

बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला तुम आग बन के आ

0: निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो।
1: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
2: है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।

है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

झांकी पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने ये तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई, तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालूंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणवीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नज़र शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया, लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जाबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आरडी बर्मन का।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ वो मक्खियाँ सर, मैं आपको मतलब नहीं समझ।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा क्यूम इस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करते हैं सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मेस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: यस सर, आई ऑल्सो ट्रीट माई एवरी कस्टमर लाइक माई डैडी।
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
3: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट।
2: हम तो कहते

0: सर वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
2: रियली सर इट इज अ वंडरफुल आइडिया, अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
0: Really, you are a brain.
2: Really, sir, you are a genius.
1: Quiet.
2: Oh.
1: Customer aaya hai.
2: Customer na kahi sir.
3: Wonderful. आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
1: देखो भाई आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है, आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए। आइए सर, आइए। खुश आमदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर, यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
3: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी। क्या मुझे काफी जान मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो मछली फंस गई,
2: मोटी मछली।
1: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। वो आप देख रहे हैं सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
3: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद हैं सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
3: योर मीन फैट फिश?
1: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
2: Yes, sir.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
2: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
3: मोटी मछली? ओह आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
1: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल
3: आपकी तरह।
1: सर ये देखिए,
3: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
1: थैंक यू। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
3: मेरा छोटा बच्चा? ही इज ओनली 5 months
2: old। ओह गुड,
1: वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
3: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
1: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
3: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर।
3: वंडरफुल, यानी कि अपने आप चलती जाएगी।
1: हाँ सर, देखिए वो बात यूँ है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे, बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर।
3: ओह आई सी।
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। जी, मेरा मतलब है सर ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
3: ओह आई सी, वेरी गुड।
1: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, मिस पाउडर वाला।
2: गुड इवनिंग सर।
3: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: पाउडर वाला बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है, मोटी मछली।
3: मछली,
2: ओके बॉस। सर आप जरा हाथ आके देंगे?
3: आई यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
2: यस सर, ये

0: सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
1: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
0: सर ये सेंट काटा माटा जैस्मीन सेंट का है।
1: काटा माटा
0: जैस्मीन? यस सर, काटा माटा जैस्मीन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो हीरोइन, साइड हीरो साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सब। नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओटो कमन शैम्पू, ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
1: लेकिन ये शैम्पू,
0: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेन साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
2: ओ मिस पाउडर वाला,
3: बच्चे चुप रहे,
2: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
0: आई एम सॉरी सर।
2: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
1: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है या नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं।
1: ओह यस, ओह यस
2: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
2: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
4: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
4: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
1: मुझे आई मीन हर साज बजाने का शौक है, माई हॉबी।
4: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
4: तो सर आप ताल, कहरवा, भैरवी, पहाड़ी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
1: झुमका गिरा रे पप्पा रे चौक,
4: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मटका होई गवा।
0: अखिया मिला के जिया भरे माँ के, चले नहीं जाना,
1: चले नहीं,
0: चले नहीं जाना, चले नहीं जाना।
1: तो चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
4: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
2: भैरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
4: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है।
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड।
4: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू। मेरा मतलब

0: मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
1: यू आर राइट।
2: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
0: कोल्ड ड्रिंक।
2: सुनो,
1: मैंगो जूस लाओ।
0: मैंगो जूस, जाओ जल्दी।
2: सर इनके लिए सर आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
2: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती
1: भाई आप मजबूर काटिए तो खाना ही पड़ेगा।
2: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
0: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
2: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
0: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
2: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
3: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक है।
2: यस सर यू आर राइट, सुई से कार तक है।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
3: व्हाट,
2: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
2: पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
2: अरे तनी फैन सुनो,
3: चले गए।
4: मोटी मछली, वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाजें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे जमीन पर से, आवाजें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसानवाल का।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म धड़क 2 से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत श्रेयस पुराणिक का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के

0: रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
5: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा

0: उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है कार्ड टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि

0: पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा

त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है।

0: दिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से, आवाजें हर्षदीप कौर और साथियों की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताए गीत आपने सुना फिल्म शहजादा से, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी। गीत के बोल आईपी सिंह और श्लोक लाल के, संगीत प्रीतम का।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर

0: अंबेडकर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
1: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था। सन 72 से 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहां आया था। मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। फिल्म मैंने मदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल। और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए। तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की। उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो। तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume

0: the administration of Oud.
1: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी.
0: I hope the king has understood what I've said.
1: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे.
0: What is this? You please tell his majesty that I have no use for that.
1: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है.
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते.
3: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी के है. जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में. हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई. मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ. बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में. तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का. हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी. तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं. मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में दो साल तक. फिर मैं यहां आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई. बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले. तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा. और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से. लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू.
4: अच्छा.
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई. शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूं मैं हूं मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता. शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता.
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं.
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था. वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो. तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है. वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है. और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म. तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी.
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था.

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि

0: छीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
1: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूं क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूं। मैं लिखता भी हूं स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में। जिंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
1: थिएटर में इसलिए मैं करता हूं, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूं थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बई में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो, इंग्लिश का प्ले है। बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
0: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
1: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहां तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में, कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ, एक दो साल से कहीं से, मालूम नहीं कहाँ से, मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई, या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली

सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूं। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: छाया गीत में आज थे कुछ कम चर्चित संगीतकारों के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल।
0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं,

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

करार करके हमें यूं न जाई, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाई, आपको हमारी कसम लौट आई।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं।
1: जी,
0: कल्याण जी वीर जी शाह।
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठी धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए, और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
0: जी,
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि

0: जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
1: क्या बात है, देखिए कहाँ कहाँ कैसी कैसी संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहाँ पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहाँ संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहाँ बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ।
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे। और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था।
1: कौन सा?
0: उसका नाम था क्लेवियोलाइन और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी।
1: जी जी।
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये।
0: बिल्कुल। और फिर तो सिलसिला चल पड़ा, पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को।
1: जी जी।
0: और
1: जी।
0: फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत उसके हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया। और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह जी को हम याद कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधा में 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं। और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूंगा कि वो क्लेवियोलाइन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई। और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली, नागिन बीन को फॉरेन में तो बीन समझती नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को ना दर्शी हुई। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया और फिर उसमें नागिन बीन बचाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना, आज भी हम याद करते हैं। सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कल्याण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहां भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वो गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि जरा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।